0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: शुभम जी लखनऊ से।
2: राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज।
1: राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी स्वयं के हृदय में हो रही पश्चाताप को समाप्त कैसे करें?
3: जब वो पाप खत्म हो जाएगा तो पश्चाताप खत्म हो जाएगा। जिसके कारण पश्चाताप हो रहा है वो अपराध वो पाप नष्ट हो जाएगा तो आनंद छा जाएगा। तो नाम जप कीजिए
2: महाराज जी। नाम जप चलता रहता है, लेकिन अगर कुछ पाप ऐसे बने हैं कि अपने पारिवारिक संबंध भी अगर कुछ लोग चले गए छोड़ के, अगर तो उसका पश्चाताप अगर हृदय में है और
3: नहीं, मतलब अभी हम समझ नहीं पा रहे,
2: अपने मुखवाणी से अगर कुछ अपशब्द निकले या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई पिछले
3: और वो पधार गए, जिनके
2: पधारे नहीं महाराज जी,
1: को छोड़ के चले गए अन्यत्र, हो सकता है पारिवारिक संबंध कोई ऐसे हो, कुछ ऐसा लड़ाई हो गया हो तो उनके शब्द को उनके दिल पे लग गए हो और छोड़ के इनको चले गए हो, अभी इनको बार बार अपनी वाणी पे वो हो रहा है।
3: वो संबंध में माता पिता है?
2: नहीं महाराज, मतलब घर से ही संबंध लो।
3: तो उनसे क्षमा याचना कर लीजिए, क्या चला जाएगा? अगर हमारे शब्दों से, वो तो परिवार के सदस्य हैं, किसी बाहरी को भी अगर दुख पहुंच रहा है और हमारा हृदय उससे तापित हो रहा है तो हमें अपने हृदय की शांति के लिए और उसकी शांति के लिए नम्रता पूर्वक
2: अभी तुम्हारे राज्य को लोग सुन, अगर
3: नहीं, अगर ऐसे सामने उपस्थित है तो पश्चाताप पूरा माना भी नहीं जाएगा, क्योंकि अहंकार आपका सुरक्षित रहेगा तो पश्चाताप क्या होगा? झुकना चाहिए आपको, छोटा हो तो भी झुकना चाहिए कि हमारे से भूल हो गई।
2: उसके बाद भी महाराज जी अगर वो लोग ना आने को,
3: फिर तुम्हारे ऊपर नहीं ताप होगा।
2: तो महाराज जी
3: आए या ना आए,
2: वो ही खाया जा रहा है।
3: नहीं आए या ना आए, आप एक बार प्रायश्चित कीजिए, एक बार क्षमा याचना कीजिए और फिर भगवान का नाम लीजिए, देखो आपको शीतलता मिल जाएगी। आना ना आना कोई खास बात नहीं है, उनके आगे झुकना खास बात है, जिससे हमारा अध्यात्म कहता है हमारे द्वारा जिसको किसी वचन से या शरीर से चूक हो गई, गलती हो गई, कोई कटु वचन बोल गए और वो दुखी है, तो हम एक बार यद्यपि वो अवहेलना करेंगे, वो आपका तिरस्कार करेंगे, पर आपकी बात बन जाएगी, आप फिर हट जाइए।
2: महाराज जी आपकी कृपालु निदान की वजह से पिछले एक साल से मांस मदिरा ये सब सेवन सब
3: बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तभी हृदय तापित है। नहीं जरा सा हृदय जब पापात्मा बन जाता है तो माता पिता को पीटता भी है तो भी ताप नहीं होता। आपको तो माता पिता नहीं है फिर भी अन्य के लिए आपके हृदय में ताप है, तो पवित्र हृदय नाम जप कर एक बार आप ऐसा कर लीजिए, जिससे आपका हृदय जो है ताप से बच जाएगा। वो तो जहां है जैसे
2: महाराज जी, बस एक प्रश्न और है कि नाम जाप में महाराज जी जैसे राधा राधा या राधा रानी के 11 नाम जो आपने बताए हुए हैं और तीसरा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी हृदय एक नाम को पकड़ने में काफी देर तक रुचि नहीं रखता है?
3: ये सबका हृदय ऐसा है, जब वो पवित्र हो जाता है तब वो एक नाम में लगता है, नहीं तो कभी, अभी तो आप मान लो श्री जी के ऐसे नामों में, तो कभी राम जपना चाहेगा, कभी कृष्ण जपना चाहेगा, कभी

0: जपना चाहेगा तो हमें चाहिए पहले इसको जपवाना चाहिए। अगर ये चाह रहा है कि मैं अभी राधा जपूं, फिर उसको लगा मैं राम राम जपूं तो राम राम जपो, फिर कह रहा मैं शिव शिव जपूं तो शिव शिव जपो। मुझे संसार का चिंतन छोड़ना है, पहले नाम को पकड़ाना है हमें, पहले नहीं कि यार ये शिव शिव क्यों चलने लगा, ये राम राम क्यों चल, ये तो आगे की स्थिति है, हमको अभी यहीं चलना है। हमारा मन मानो थोड़ी देर राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपा, थोड़ी देर राधा राधा जपा, थोड़ी देर श्री जी के नाम और जो राधा राशि श्री रम्या ऐसा, और फिर कभी चतुराशी जी का पद गाने लगा मान लो, कभी और स्तोत्र गाने लगा, तो हम भागवतिक मन को बनाना चाहते हैं, इसलिए हमको इसको विरोध नहीं करना, उसको सपोर्ट में लाना है। वो तो जो चाहे भागवतिक गान करे, संसारिक से हटे, तो हमारा मन फिर धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। और पहले से ही यदि हम इसको हठ में रोकेंगे तो ये फिर बड़ा हठीला है, फिर जो जप करवा रहा है उससे भी हटने लगेगा। तो जितना लगे इसको पहले लगा लो, ठीक है ना। हाँ पैसा आप कोई व्यसन तो नहीं कर रहे?
1: नहीं नहीं कुछ,
0: कोई नशा नहीं,
1: एकदम भी नहीं।
0: बहुत अच्छे बच्चे हो।
1: साल भर हो गए महाराज जी आपकी कृपा के बाद से, जब से यूट्यूब से के माध्यम से जुड़ा, फरवरी में आया था पहली बार और आज दूसरी बार बता रहा हूँ महाराज जी।
0: ठीक है, थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं। हाँ हाँ बहुत सुंदर, बस मनुष्य जीवन का यही लाभ, शरीर स्वस्थ, भगवत चिंतन प्राण, और दूसरों को उपकार करें, दूसरों का बचा के उपकार ऐसा करें कि उसका मंगल हो और हम फंसे ना, नहीं उपकार में फंसने की बहुत संभावना होती है। हाँ ऐसे परोपकार में जीवन, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, ये मनुष्य जीवन बहुत बच्चा महान बनने के लिए है। अपने लोग छोटी छोटी गलतियों में, छोटी छोटी बातों में ऐसे फंस जाते हैं कि पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि इतना हमारी सोच पवित्र होती जाए कि हम उस महान परमात्मा को भी प्राप्त कर लें। उसकी प्राप्ति करना हमें अति अति आवश्यक है। अगर मनुष्य जीवन में परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो फिर किसी उनमें हमारी परमात्मा प्राप्ति होगी। इसलिए नाम जप करते रहो और सत्संग सुनते रहो और दूसरों का हित सोचते रहो। कभी कोई अपने पास जितने भी संबंध है परिवार के, सबका हित कैसे हो, फिर हम अपने मोहल्ले का हित कैसे करें, फिर हम अपने पूरे गांव का हित कैसे करें, फिर हम इतना विस्तृत हो जाएं कि अपने राष्ट्र का हित कैसे करें, फिर विश्व का हित करें, तो वही महात्मा हो जाता है, महान आत्मा जो सबका मंगल सोचता है जी। तू जो
2: है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: भारत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी, सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065775।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार KDR।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार।

0: और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: प्रणाम, सुप्रभात। हर रोज की तरह हाजिर बाड़ी राउर रेडियो दोस्त दीपाली, राउर स्वास्थ्य के ख्याल करे वाला कार्यक्रम आपन दे आपन देखभाल लेके। ई कार्यक्रम में हम बतावेंगे कुछ उपयोगी नुस्खा, जैसे राउर स्वास्थ्य तो बढ़िया होगबे करी, साथ ही साथ राउर सौंदर्य भी निखरी। तो चलिए दोस्त लोग, हम अपना घरेलू नुस्खा की सिलसिला शुरू करें। आज हमने की अपना कार्यक्रम की शुरुआत में जानल जाई दही की घरेलू नुस्खा। दोस्त लोग, ऐसन कहल जाला कि दही में छुपल बा खूबसूरती के खजाना। कई बार हमनी के साधारण से बीमारी में भी घबरा जानी सन, लेकिन अगर हमनी के थोड़ा भी घरेलू नुस्खा के बारे में पता हो के तो आसानी से तुरंत इलाज कही जा सकेला। ऐसे में दादी नानी के खजाना से हम लेके आयल वानी ऐसने कुछ खास लाजवाब, सरल और सहज नुस्खा, जौना के अपना के रवा भी पा सकतनी निरोगी काया। दोस्त लोग, हमनी के खान पान में ही ऐसन कई चीज शामिल होला जिनमें खूबसूरती और स्वास्थ्य की खजाना छिपल होला। दही भी एगो ऐसन ही खजाना है जेकर उपयोग हर तरह से फायदेमंद है। दही के गुण के बारे में। दही के रोजाना सेवन से शरीर के बीमारी से लड़े के क्षमता बढ़ेला। दही में अंजवाइन मिला के पिए से कब्ज के शिकायत दूर होला। गर्मी के मौसम में दही के छाछ या लस्सी पिए से पेट के गर्मी शांत होला। एके पी के बाहर निकली तल्लू से भी बचाव हुई। पाचन क्षमता बढ़ावेला। दही में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होला। एके रोजाना खाए से पेट के कई बीमारी ठीक हो जाला। दही के रोजाना सेवन सर्दी और सांस के नली में होके वाला इन्फेक्शन से बचावेला। अल्सर जैसन बीमारी में दही के सेवन से विशेष लाभ मिलेला। छाला होके पर दही के कुल्ला करे से छाला ठीक हो जाला। तो दोस्त लोग, अभी हमनी के जननी हसन दही के घरेलू नुस्खा। तो चलिए अब जानल जाओ डायबिटीज के घरेलू इलाज। गुड़हल के लाल फूल के 25 पत्ती नियमित खाई, सदाबहार के पौधा के पत्ती के सेवन करी। कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में 5 से 6 भिंडी काट के रात के गला दी। आज सुबह ये पानी के छान के पी ली। मेथी दाना, गुड़हल और ये बेर के पत्ती पीस के पेस्ट बना ली। आ एके 15 मिनट तक बाल में लगाई। ऐसे राउर बाल के जड़ मजबूत हुई और ये स्वस्थ भी। मेहंदी के पत्ती, बेर के पत्ती, आंवला, शिकाकाई, मेथी दाना और ये कॉफी के पीस के शैम्पू बनाई। आ ई शैम्पू से बाल के धोई। ऐसे बाल चमकदार और ई घना हुई। डैंड्रफ की समस्या से निजात पावे खातिर नींबू और आंवला के सेवन करी और ई लगाई। आयरन के पूर्ति खातिर सतावरी के कंद के पाउडर बना के आधा चम्मच दूध के साथ नियमित ली। ऐसे कैल्शियम की कमी ना हुई। आयरन बढ़ावे खातिर पालक, टमाटर और गाजर खाएं।

करे खातिर अश्वगंधा 100 ग्राम, सतावरी पाउडर 100 ग्राम, शंखपुष्पी पाउडर 100 ग्राम, ब्राह्मी पाउडर 50 ग्राम मिला के शहद या दूध के साथ लेवे से बच्चा की बुद्धि तीव्र

सेहत की रखवाला पांच मसाला की घरेलू नुस्खा। प्रकृति हमनी के बहुमूल्य जड़ी बूटी एवं मसाला उत्तम स्वास्थ्य खातिर उपहार में दिहले बा। मसाला के सामान्यता स्वास्थ्य वर्धक एवं पाचक मानल जाला। अतः मसाला एवं जड़ी बूटी के एगो फर्स्ट एंड बॉक्स बना के हम घरेलू उपचार में प्रयोग कर सकतानी, ठीक वैसे ही जैसे हमनी के दादी नानी करेला लो। जैसे में हल्दी, आयुर्वेद के अनुसार हल्दी उष्ण सौंदर्य बढ़ावे वाला रक्त शोधक कफवात नाशक आदि होला। सर्दी खांसी में गर्म पानी से हल्दी के फंकी देवे से आराम मिलेला। और बलगम भी निकल जाला। हल्दी एंटीबायोटिक के काम भी करेला। एके फेस पैक के रूप में बेसन के साथ लगावे से त्वचा में निखार आवेला। अदरक एगो पाचक है। पेट में कब्ज, गैस बनल, वमन, खांसी, कफ, जुकाम आदि में एके काम में लावल जाला। अदरक के रस और शहद मिला के चाटत रहे से दमा में आराम मिलेला, साथ ही भूख भी बढ़ेला, ये पाचन ठीक करेला। नींबू नमक से बनल सूखा अदरक रवा यात्रा के साथ रख सकतानी। मेथी दाना खून के पतला करेला, मल के बांधेला। मधुमेह रोगी खातिर मेथी दाना रामबाण औषधि है।

0: मेथी दाना के चूर्ण या आखा मेथी दाना पानी के साथ लेवे से कब्ज व घुटना के दर्द में आराम मिलेला। साथ ही ई शरीर के अतिरिक्त चर्बी छांटे में भी कारगर है। सर्दी में ई बेहद फायदा करेला। जीरा पाचक और सुगंधित होला। खाए में अरुचि, पेट फूलल, अपच आदि के दूर करेला। जीरा अंजवाइन पीस के थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के भोजन के बाद लेवे से पाचन ठीक रहेला। ऐसे उल्टी के शिकायत भी बंद हो जाला। नाशक एवं ज्वर निवारक भी है। सौंफ शीतल प्रकृति के औषधि है। भोजन के बाद मुशुद्धि में एकर प्रयोग होला। गर्मी में ठंडाई में भी डालल जाला। भुनल होकल सौंफ और मिश्री समान मात्रा में पीस के हर 2 घंटा बाद ठंडा पानी के साथ फंकी लेवे से मरोड़दार दस्त, आँव और पेचिस में लाभ होला। ई कब्ज के दूर करेला। बादाम, सौंफ और मिश्री तीनों बराबर भाग में लेके पीस के भर दी और रोज दोनों टाइम भोजन के बाद एक चम्मच ली। ऐसे स्मरण शक्ति बढ़ेला। दोस्तों चलिए अब हम बता दें कुछ घरेलू उपाय जौन तुरंत असर दिखाए, यानी सेहत के आसान घरेलू नुस्खा। तेज सिर दर्द में यदि पिपरमेंट के गर्म करके सिर पर लगावल जाए तो उसे बहुत आराम मिली। हिचके आवे पर तुलसी व शक्कर खाके पानी पिए से फायदा होला। मुंह में छाला होके पे नारियल खाए के चाहिए। ऐसे छाला जल्दी ठीक हो जाला। भूख ना लगे या कम लगे पर सौंफ के चूर्ण में शहद मिला के दिन में 2 बार 1-1 चम्मच सेवन करे के चाहिए। दाढ़ में दर्द के स्थिति में लौंग के तेल लगावे से दर्द खत्म हो जाला। मसूड़ा फूले पर सरसों के तेल में नमक मिला के मसूड़ा पर हल्का हल्का मसाज करे से लाभ प्राप्त होला। तो दोस्तों ये रहा आज के घरेलू नुस्खा रउआ स्वास्थ्य की और बढ़िया रखे के। तो ये नुस्खा के रउआ जरूर अपनाए और अपना जिंदगी के खुशहाल बनाए। तो अब हम ले रउआ से जाए के आज्ञा। नमस्कार।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
5: और 90-97-61-60-02।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन फरियाद, सांसद ने भी लगाया जनता दरबार। 271,000 लाभार्थियों को एक खाते में भेजी गई पेंशन की राशि। जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर उत्पाद विभाग की प्रारंभिक परीक्षा का होगा आयोजन। अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की हो गई मौत और अलग अलग थानों द्वारा गिरफ्तार आधा दर्जन से अधिक लोगों को भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान के तहत जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उसे निष्पादित करने का प्रयास भी किया गया। इसी तरीके से पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के कार्यालय में भी जनता दरबार का आयोजन हुआ, जहाँ अलग अलग थानों से आए फरियादियों की समस्याओं का निदान करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा आज गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी अपने आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया, जहां जिले के कोने कोने से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। उनके मामलों को निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज अपने कार्यालय में अवर निरीक्षक मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा निरीक्षक मध्य निषेध के पदों पर 12 जुलाई को आयोजित होने वाली प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग भी की गई। बैठक में सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त तथा पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर समय से पूर्व पहुंचकर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों की सघन जांच, निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन और समन्वय के साथ कार्य करने पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया गया। जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर 12 जुलाई को यह परीक्षा आयोजित हो रही है। बताया जा रहा है कि इन 4 परीक्षा केंद्रों पर 2,976 अभ्यर्थियों के शामिल होने की जानकारी है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के 2.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में आज सीधे DBT के माध्यम से पेंशन की राशि हस्तांतरित की गई। इस दौरान पटना से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस राशि को पूरे बिहार के लाभार्थियों के खाते में भेजा। गोपालगंज में भी इसका जिला पदाधिकारी के यहाँ लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें उपस्थित बहुत सारे लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिले के 271,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में जब यह राशि गई तो सभी लोगों ने सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस लाइव कार्यक्रम में जिलाधिकारी समीर सौरभ समेत जिले के तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कई लाभार्थियों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया था और सभी लोगों ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को सीधे देखा और जब उनके खातों में पैसे पहुंचे तो सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जिले में प्रत्येक दिन सड़क हादसों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आए दिन हो रहे सड़क हादसों के बाद भी युवा और वाहन चालक सावधानी नहीं बरत रहे हैं। आज भी कई गली मोहल्लों में तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए और सड़कों पर लहरिया कट बाइक चलाते हुए युवा दिखाई दे देते हैं। हादसों के बाद भी लोग नहीं संभलते हैं, बिना हेलमेट के भी बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं और अनियंत्रित तथा अवैध तरीके से वाहन चलाने की वजह से कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो जा रहे हैं। आज भी गोपालगंज में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक दिव्यांग सरकारी शिक्षक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। मृतक 45 वर्षीय मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सरकारी शिक्षक थे और एक पैर से दिव्यांग भी थे। वहीं घायल की पहचान 44 वर्षीय राजेश कुमार सिंह, पिता कृष्णा देव सिंह, जो रामपुर बंगरा थाना तरिया सुजान जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये दोनों लोग किसी कार्य से गोपालगंज आए हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे मनोज कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि राजेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने मनोज कुमार के मौत की पुष्टि की। कुचायकोट क्षेत्र में ही नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई। घटना के बाद से अब मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। परिवार के लोग पहुंचे और अस्पताल से शव लेकर गए। वहीं घायल राजेश कुमार सिंह का इलाज चल रहा है। दूसरी घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में हुई। यहां भी अज्ञात वाहन की टक्कर से 47 वर्षीय अनूप कुमार श्रीवास्तव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन की पहचान में जुटी हुई है। यह घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी पूरब टोला स्थित काली मंदिर के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में मृतक अनूप कुमार श्रीवास्तव के परिजनों में घटना के बाद से कोहराम मचा हुआ है। इसके अलावा कटिया पुलिस ने पुलिस पर हमला करने के मामले में दो प्राथमिकी अभियुक्तों को ही गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी भरत शर्मा पिता महंत शर्मा और रामू कुशवाहा पिता राम दयाल कुशवाहा, ये दोनों कटिया के मोहनपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आज दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन लोगों पर पुलिस की टीम पर हमला करने का आरोप दर्ज था। आज अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने कई लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी तरह एक मामला कटिया थाना क्षेत्र से आया जहां चीटिंग कांड के प्राथमिकी अभियुक्त मोहन लाल पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह नगर थाना के बसडीला के रघुनाथ पंडित के पुत्र बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा उचका गांव थाना की पुलिस ने भी SC/ST एक्ट में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त ऋषभ कुमार पिता राजू चौधरी को गिरफ्तार किया। यह उचका गांव के पीड़रा के रहने वाले हैं। इन पर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज था। पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। आज इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोपालगंज जिले के मॉडल सदर अस्पताल के निर्माण में एक साल के भीतर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आए दिन इस बिल्डिंग में कई समस्याएं आती हैं। कभी लिफ्ट खराब होता है तो कभी AC खराब होता है। अभी बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर कई जगहों में दरारें आ गई हैं। फायर सेफ्टी की भी खामियां मिली और अन्य बुनियादी समस्याएं भी मरीजों को सता रही हैं। अब हाल ही में बने इस नए बिल्डिंग में दीवारों में दरार आने के बाद से लोग चिंतामग्न हैं। बहुत सारे लोग इसके गुणवत्ता की जांच कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में अस्थाई लोक अदालत के गठन, इसकी भूमिका, इसके क्षेत्राधिकार, इसमें दाखिल होने वाले वादों की प्रकृति, इसके फायदे आदि के बारे में विद्वान अधिवक्ता गण के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राधे श्याम शुक्ला, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार और अनूप कुमार उपाध्याय, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा DSP यातायात, सदस्य राजेश रंजन कुमार, दिव्यांशी मिश्रा सहित तमाम अधिकारी गण और बहुत सारे अधिवक्ता गण इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी लोगों को अस्थाई लोक अदालत के संदर्भ में आवश्यक जानकारियां दी गई। वक्ताओं ने कहा कि अस्थाई लोक अदालत एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जो डाक, तार, टेलीफोन, वायु, सड़क यात्रा, सड़क द्वारा यात्रा या माल सेवा के लिए यातायात सेवा, बिजली, सार्वजनिक माल वाहन या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय सेवा, बीमा सेवा, आवास एवं रियल एस्टेट सेवा, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा आदि जैसी जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे का मंच प्रदान करती है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं जो लोक हित में आते हैं। साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC केस रानी तिवारी बनाम बिहार सरकार में पारित मामले के आलोक में ट्रैफिक चालान के सुलहनीय वादों का भी अस्थायी लोक अदालत में निदान किया जाएगा। 125 वर्ष पुराने राजकीय संरक्षित शिव मंदिर डुमरिया के संरक्षण और विकास को लेकर आज जिलाधिकारी ने बैठक की। जर्जर मंदिर भवन के संरक्षण, पुनर्स्थापन और संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए DPR तैयार कर पुरातत्व निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया। वहीं मंदिर परिसर में सुरक्षा गार्ड, शौचालय और नियमित साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर खरिया गांव के पास भी एक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से जा रही एक विकास मित्र सड़क हादसे में घायल हो गई। उनके पति भी घायल हो गए। तत्काल दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां महिला की मौत हो गई। मृत महिला कटिया थाना क्षेत्र के भेड़िया पंचायत में विकास मित्र के रूप में अपनी सेवा दे रही थी। फिलहाल घायल पति का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है।
10: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में सामूहिक धान रोपनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किसानों के साथ खेत में उतरकर धान की रोपनी की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, किसानों के श्रम का सम्मान करना तथा वैज्ञानिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों के बीच बेहतर समन्वय एवं टीम वर्क की भावना को सुदृढ़ करना बताया जा रहा है।
11: माझा थाना क्षेत्र के पिपरा पुल पर बाजार जाने के दौरान एक साइकिल सवार व्यक्ति गंडक नहर में गिर गया। बताया जा रहा है कि कई घंटों से लापता है। शुक्रवार की शाम को हुई इस घटना के बाद परिजन स्तब्ध और परेशान हैं। स्थानीय गोताखोर देर शाम तक साइकिल सवार की तलाश नहर में कर रहे थे, परंतु उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। बताया जा रहा है कि यह लापता व्यक्ति इजहारुल हक है, जो पानी में गिर गया है। इनके परिजन काफी परेशान हैं और लगातार इनकी तलाश गोताखोरों के द्वारा की जा रही है।
10: और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
9: जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन फरियाद, सांसद ने भी लगाया जनता दरबार। 2,71,000 लाभार्थियों के खाते में भेजी गई पेंशन की राशि। जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर उत्पाद विभाग की प्रारंभिक परीक्षा का होगा आयोजन।
10: अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की हो गई मौत। और अलग अलग थानों द्वारा गिरफ्तार आधा दर्जन से अधिक लोगों को भेजा गया जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
13: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
14: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
15: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
14: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
16: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
17: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
16: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
18: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
19: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
20: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
21: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065575।
22: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
23: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
21: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
23: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
21: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
24: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
25: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुँचा रहे हैं।
2: आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
2: सच कहूं से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
3: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
2: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
3: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
2: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
3: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
2: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
3: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
2: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्यों अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
3: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
2: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
3: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता, आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
2: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता, बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
3: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है, बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
2: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े।
24: क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
3: हाँ हाँ बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गांव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैड बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वह उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
24: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
3: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
24: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
3: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
24: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
3: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन

0: में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
1: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
1: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुँचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
0: श्रोताओं, याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में सेहत से ही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,000

0: ₹85 में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हो बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
8: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इम्पोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर

0: मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
2: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
5: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
0: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है, और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है, और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज्य की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट एक रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइन 5 MOUs इन की एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री टू बूस्ट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral.
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
13: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस।

0: गोपालगंज,
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम, हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री। कमलश्री कमलश्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमलश्री कमलश्री कमलश्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971602।

0: पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज गया जी में बिहार विधानसभा के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाजीपुर में करेंगे शुभारंभ। वरिष्ठ न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और अररिया समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी आ रहे हैं। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: गया जी के बिपाड परिसर में विधायकों के लिए 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। शिविर का उद्देश्य नए और पुराने सभी सदस्यों को संसदीय कार्य प्रणाली और विधानसभा की नियमावलियों से परिचित कराना है। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल की तैयारियां पूरी कर ली है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह में इस सुविधा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की भी शुरूआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहेंगे।
2: यह व्यवस्था प्रदेश के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में लागू होगी। निबंधन के पूर्व संबंधित व्यक्तियों को अंचलाधिकारी को जमीन के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए GIS तकनीक से निरीक्षण किया जाएगा। वहीं मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से जमीन, फ्लैट या प्लॉट की घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध होगी। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए eNibandhan.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1-4-5-4-4 पर भी संपर्क किया जा सकता है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारी।
0: प्रदेश में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 3008 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। श्री कुमार ने पटना, सारण, गया और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारियों को टाउनशिप के सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि सोनपुर में हरिहरनाथ टाउनशिप के लिए 2000 एकड़, गया जी के मगध टाउनशिप के लिए 1629 एकड़ और मुजफ्फरपुर के तिरहुत टाउनशिप के लिए 1191 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों का नियोजित विकास और विस्तार तथा नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सैटेलाइट टाउनशिप मददगार साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के निर्णय के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम की घोषणा की। श्री सिन्हा ने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है।
3: मैं शुरू से मैं बूथ मंत्री बना, बूथ अध्यक्ष बना, महामंत्री बना और मैं 2 बार से मंडल अध्यक्ष रहा और जिला उपाध्यक्ष का भी कार्य मैं युवा मोर्चा में किया हूँ। जीत तो बहुत जबरदस्त होने जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हमारे आम जनता हम लोग बांकीपुर नमन को बहुत बहुत आशीर्वाद देने जा रही है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनके कार्य को देख करते हुए आज ही लोग यहाँ पे देंगे।
0: प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन करेंगे। इससे पहले पार्टी ने अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। श्री कुमार ने 9 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। पटना में पार्टी प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।
4: मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
0: गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित है। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। बिहार और हरियाणा के बीच सुरक्षित और सुलभ परिवहन के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में दोनों राज्यों के बीच कल द्विपक्षीय बस परिचालन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर बिहार सरकार की ओर से राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच नियमित बस सेवाओं का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को किफायती दरों पर सुरक्षित, आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरियाणा के गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, पानीपत सहित अन्य निर्धारित शहरों से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 6 प्रमंडलों पटना, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर के लिए आधुनिक वातानुकूलित बसों का नियमित परिचालन किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के वरीय न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। कल उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में आयोजित समारोह में उन्हें औपचारिक विदाई दी गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से पटना समेत कई जिलों में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सीवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के अधिकांश स्थानों पर, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान पटना, अरवल, खगड़िया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली और मुजफ्फरपुर समेत 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटाड़ में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोपालगंज, वैशाली, पूर्णिया और मधेपुरा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में हर महीने की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल 97,84,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में DBT के माध्यम से राशि भेजने के बाद यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर महीने की 10 तारीख को पात्र लाभुकों के खाते में पेंशन राशि पहुंच जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर पात्र व्यक्ति को पेंशन योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। श्री सिन्हा ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने को भी कहा गया है। श्री सिन्हा ने उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने किसानों से आग्रह किया है कि वे उर्वरक खरीदते समय रसीद अवश्य लें। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा 26 जुलाई को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में ली जाएगी। बिहार की टीम हैदराबाद में खेली जा रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय जूनियर बालक रग्बी 7 प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में बिहार का मुकाबला केरल से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में बिहार ने छत्तीसगढ़ को 34-0 से पराजित किया। और अब जिलों से प्राप्त अन्य समाचार। भोजपुर जिले के अगियाओं थाना क्षेत्र अंतर्गत आहर के पास छापेमारी कर पुलिस ने सामुदायिक सेवा केंद्र को लूटने की योजना बना रहे अपराधी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों की तरफ से फायरिंग होने पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। मौके से फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है। मधुबनी पुलिस ने बेनीपट्टी थाना के डायल 112 टीम के जवानों पर जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान 96 मामलों की सुनवाई की। कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पेंशन योजना के पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का अभियान चलेगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, केंद्र ने E20 की लागत अधिक बताकर कीमत भी नहीं घटाने का दिया संकेत। सरकार का स्पष्ट संदेश, शुद्ध पेट्रोल या E10 लौटना अब संभव नहीं। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर उपचुनाव पर लिखा है, भाजपा ने 72 घंटे में प्रत्याशी बदला, नीरज कुमार सोमवार को करेंगे नामांकन। प्रभात खबर लिखता है, राहत, बीपी, शुगर, कैंसर समेत 39 नई दवाओं की कीमत तय। आज अखबार की सुर्खी है, 15 अगस्त के बाद जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज गया जी में बिहार विधानसभा के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाजीपुर में करेंगे शुभारंभ। वरिष्ठ न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, मौसम विभाग ने आज पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और अररिया समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्रामिक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी, गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205262112 पे।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करे 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
14: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 80029-94921 80029-94921 पर। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
15: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
16: जी नमस्ते मैम।
15: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
16: नाम सालू कुमारी।
15: कहाँ से बात कर रही हैं सालू जी?
16: बिरती टोला से।
15: जागीरी टोला से?
16: श्रीसिया बिरती टोला।
15: अच्छा, श्रीसिया बिरती टोला। ठीक, कैसे हैं सालू जी?
16: अच्छा, आप बताइए।
15: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या करती हैं सालू जी आप?
16: पढ़ाई करती हूँ।
15: किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
16: नाइन्थ क्लास में आ गए।
15: नाइन्थ क्लास में आ गई हैं आप। और पढ़ाई कैसा चल रहा है आपका?
16: अच्छा चल रहा
15: है। ये बढ़िया है। आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल किए हैं सालू जी?
16: पहले भी कर चुकी हूँ।
15: अच्छा, पहले भी बात हुई है। तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
16: मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बरेंद्र कुमार प्रसाद
15: जी। क्या करते हैं पापा जी आपके?
16: बिजनेस मैन है।
15: चलिए, और आपका क्या लक्ष्य है, आगे क्या करना है पढ़ाई करके, कुछ सोचा है आपने?
16: जी, आगे पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज में जाना है।
15: सिविल सर्विसेज में जाना है, चलिए बढ़िया है। तो शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम आपके साथ।
16: यस मैम।
15: जी, लिया जाए पहला प्रश्न।
16: यस मैम।
15: ओके,

0: तो सालू जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ।
0: रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन डी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी क्या था?
0: विटामिन बी।
1: और ऑप्शन सी?
0: विटामिन डी।
1: दोनों विटामिन डी?
0: ऑप्शन बी विटामिन बी है।
1: हाँ।
0: और ऑप्शन सी विटामिन डी है।
1: अच्छा। विटामिन ए?
0: हाँ?
1: विटामिन ए।
0: विटामिन ए?
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है, लॉक कीजिए।
0: चलिए, तो चलिए सालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए को लॉक करते हैं और आपको बताएं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी कंप्यूटर, सी रेडियो। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी कंप्यूटर।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कंप्यूटर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, तो सालू जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम और ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं? चलिए, तो सालू जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान के जनक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर विधान चंद्र राय और ऑप्शन सी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन सी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: तो चलिए सालू जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका पांचवा प्रश्न ये है, जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है?
1: 30 जनवरी।
0: हाँ। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: श्योर है आप?
1: श्योर नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके पांचों प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
8: जी मैं बिमल कुमारी बोल रही हूँ, लाइन बाजार से।
0: जी कैसे हैं बिमल जी।
8: ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो
8: हेलो।
0: हाँ
8: जी बोलिए।
0: मैंने की पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी।
8: पढ़ाई अभी तो बंद है।
0: अच्छा, तो अभी क्या हो रहा था।
8: अभी कुछ नहीं, सिलाई चलाती हूँ तब तक फ्री टाइम में।
0: क्या चलाती हूँ।
8: सिलाई कर लेती हूँ फ्री टाइम में।
0: अच्छा, सिलाई भी करती हैं, सब कुछ सिल लेती हैं।
8: हाँ लेडीज, स्वामी लेडीज।
0: लेडीज मतलब सारी चीज सिल लेती हैं।
8: हाँ।
0: तो आपको लेडीज टेलर बोल सकते हैं।
8: हाँ नाम ही अपना सिल कर पहन लेते हैं लोग, दूसरे को सिल देते हैं लोग।
0: चलिए अच्छी बात है, करना चाहिए, वो भी जरूरी है। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए?
9: जी मैम।
0: जी मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
9: मम्मी का नाम प्रभाती देवी है, पापा जी के नाम श्री रामाजी प्रसाद है।
0: जी तो लिया जाए ना पहला प्रश्न।
9: जी मैम।
0: जी

0: तो विमल जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम और ऑप्शन सी विजयी विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम।
0: क्यों है?
1: हाँ
0: जी। और आपके बगल में कोई बच्चा है?
1: हाँ,
0: बीच बीच में आवाज आ रही है थोड़ा।
1: बेबी, छोटा सा बेबी, एक मंथ का, वो पास ही में है।
0: चलिए कोई नहीं, तो लॉक करें आपका आंसर।
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी वंदे मातरम को लॉक करते हैं।
1: जी
0: जी। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन ए।
0: क्यों है?
1: जी मैम।
0: जी, कला करो।
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, बिहार केसरी के नाम से किस महान पुरुष को जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर, सी श्री कृष्ण सिंह। तो आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्री कृष्ण सिंह।
0: क्यों है?
1: सी।
0: लॉक कर दूं? तो क्या कहती हैं, लॉक करो कि कोई और ऑप्शन दीजिएगा?
1: कर दीजिए मैम, देखते हैं।
0: कर दिए। चलिए, तो विमल जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी हाँ।
0: जी, आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी कंप्यूटर, सी रेडियो। आपका समय शुरू होता है। क्यों है?
1: हाँ,
0: लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी कंप्यूटर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही है। तो तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, तो पांचवा प्रश्न आपसे ये है विमल जी, जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? 30 जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी और
1: महात्मा गांधी।
0: जी, तो रहे आप?
1: जी मैम।
0: तो लॉक कर दो?
1: जी।
0: चलिए, तो चलिए विमल जी, आपके पांचों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 8 मार्च, बी 28 फरवरी, और सी 22 मार्च. आपका समय
1: 8 मार्च.
0: क्लियर है?
1: जी मैम.
0: लॉक कर दो.
1: जी जाना मैंने.
0: ओके तो चलिए विमल जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 8 मार्च को लॉक करते हैं. और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है. तो तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैम.
0: जी तो सातवां प्रश्न आपसे ये है, निम्न के किस जिले में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? निम्न के किस जिले में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए छपरा, बी बेतिया, सी सिवान. आपका समय शुरू होता है अब.

0: कंफर्म नहीं है मैम, फिर भी
1: छपरा लॉक कर दीजिए।
0: छपरा कर दें
1: जी,
0: श्योर है लॉक?
1: श्योर तो नहीं है, मैं चेक कर रहा है, लेकिन लॉक कर दीजिए, देखते याद नहीं आ रहा है तो क्या करें।
0: चलिए कोई नहीं, तो आपके सातों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए छपरा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातों प्रश्न का उत्तर गलत है, सही उत्तर होगा सिवान।
1: तो ओके मैम,
0: ओके। हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं आप।

0: थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
4: हेलो,
5: नमस्ते मैम। नमस्ते मैम,
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
5: ये मैं अभिजीत कुमार पचुरुखी से बात कर रहा हूँ।
4: पचुरुखी से?
5: जी,
4: सिवान पचुरुखी।
5: जी जी
4: जी। और अभिजीत नाम पड़ेगा आपका?
5: जी।
4: क्या करते हैं अभिजीत जी?
5: बारहवीं का एग्जाम पढ़ाई करता हूँ।
4: बारहवीं में?
5: जी
4: जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
5: बढ़िया चल रही है।
4: ये अच्छी बात है। तो आगे क्या करना है, पढ़ के कुछ सोचा आपने? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है।
5: गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है।
4: अच्छा, अभी शुरू नहीं किया है?
5: नहीं।
4: ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप?
5: जी जी
4: जी। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अभी। देखिए,
5: मम्मी जी का नाम उषा देवी और पिताजी का नाम दिनेश ठाकुर।
4: क्या करते हैं पापा जी आपके?
5: फार्मर हैं।
4: तो शुरू किया जाए आज का प्रश्न आपके साथ।
5: जी
4: जी।

0: अभिजीत जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 12 जनवरी, सी 17 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बारह जनवरी
0: सर है
1: जी।
0: चलिए तो अभिजीत जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 जनवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मोतिहारी, बी मुजफ्फरपुर, सी बेतिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी फिक्स कीजिए।
0: बेतिया
1: जी।
0: प्योर है
1: जी।
0: लॉक कर दो
1: जी।
0: तो विजय जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बेतिया लॉक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, तीस जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तीस जनवरी को भारत के किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: महात्मा

0: महात्मा गांधी।
1: श्योर है?
0: जी।
1: लॉक कर दो?
0: जी
1: जी। तो चलिए अभिजीत जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
0: जी।
1: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, बिहार राज्य को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? बिहार राज्य को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 14। आपका समय शुरू होता है अब।
0: नौ फिक्स कीजिए।
1: आपके बगल में कोई है?
0: बात कर रहा था, गया हो?
1: हाँ,
0: गया उधर, बात कर रहे थे। नौ फिक्स कीजिए।
1: श्योर है आप?
0: जी।
1: तो चलिए अभिजीत जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 9 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
0: जी।
1: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्मदिन कब मनाया जाती है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 16 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब।
0: ऑप्शन एक बार और बोलोगे?
1: ऑप्शन ए 12 फरवरी, बी 13 फरवरी और सी 16 फरवरी।
0: 13 फरवरी फिक्स कीजिए।
1: श्योर है?
0: जी।
1: तो चलिए अभिजीत जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 13 फरवरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
0: जी।
1: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, बिहार राज्य के निम्न जिलों में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन ए नालंदा, बी औरंगाबाद और सी पटना। आपका समय शुरू होता है अब।
0: औरंगाबाद फिक्स कीजिए।
1: क्यों है?
0: क्यों नहीं
1: है? लॉक कर दूं?
0: जी।
1: तो चलिए अभिजीत जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी औरंगाबाद को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा पटना।
0: ठीक है मैम।
1: ओके, हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710 3992 या 90765 65750।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो।
8: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
8: जी मैम।
1: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
8: नाम सलोनी कुमारी बंजारी, ब्रह्मस्थान गोपालगंज से।
1: जी, कैसी हैं सलोनी जी?
8: ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है सलोनी जी आपकी?
8: बी ए फाइनल ईयर
1: चल रहा है।
8: हाँ,
1: पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
8: अच्छी चल रही है।
1: मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
8: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है कुंदन लाल।
1: ठीक, तो लिया जाए आपसे आज क्या पहला प्रश्न?
8: हाँ लीजिए।
1: ओके,

0: तो सलोनी जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ,
0: भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए इंद्रज सागर, ऑप्शन बी गोविंद सागर और ऑप्शन सी नागार्जुन सागर।
1: गोविंद सागर।
0: चोर है?
1: चोर तो नहीं है पर लग रहा यही होगा।
0: लॉक कर दें?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है।
1: हाँ,
0: भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी हीराकुंड, सी गोविंद सागर। आपका समय
1: होता है?
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर हो।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है। संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन बी से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय और सी संसद।
1: सर्वोच्च न्यायालय।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: लॉक कर दें?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को लॉक करते हैं। और आपको बता दी कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947। आपका समय श्रोता है अब।
1: बी लगाइए।
0: 26 नवंबर 1949।
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है। नहीं,
0: जनवरी 1950 नहीं हो सकता।
1: लगा लीजिए 26 जनवरी 1950।
0: एक बार फिर सोच लीजिए।
1: लगाइए 26 जनवरी 1950।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर 26 जनवरी 1950 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर था 26 जनवरी 1949, जो आपने पहले बताया था।
1: ठीक है,
0: ठीक है। हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
3: जी नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
3: सालू कुमारी श्री से बेदिटोला से।
2: ठीक, कैसी हैं सालू जी?
3: हम ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो कहाँ तक पढ़ाई की है सालू जी आप?
3: अभी 9th में हूँ, पढ़ाई कर दिया हूँ।
2: 9th का चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है आपकी?
3: अच्छा चल रहा है।
2: आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
3: जी UPSC में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है।
2: अच्छा, तो तैयारी शुरू कर दी है कि अभी 10th के बाद?
3: 10th के बाद।
2: 10th के बाद, चलिए बढ़िया है। चलो, क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं आप?
3: हाँ किए हैं, एक बार मैंने दिया था 10 क्वेश्चन का टोटल आंसर, तो उसमें कुछ हुआ ही
2: होगा? जरूर दी है तो
3: पक्का नहीं।
2: पक्का होगा, ऐसा थोड़ी है, सबका एक साल में जब हमारा ये रेडियो रिमझिम का स्थापना दिवस होता है, जब सब कोई रहता है उस बीच में बुलाया जाता है सभी को, जो पूरे साल में जितने लोग विनर बने होते हैं। आपके बगल में कोई है?
3: नहीं, वो पापा का फोन आ रहा है इसलिए।
2: अच्छा, कोई है तो फिर उन्हें भेज दीजिए या फिर आप कहीं अलग हो जाइए, ठीक है?
3: ठीक है।
2: ओके, तो सालू जी लिया जाए पहला प्रश्न आपसे आज का।
3: हाँ,
2: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
3: मेरी मम्मी का नाम अच्छी, मेरी निर्मला देवी, पापा का नाम बलिंद्र कुमार प्रसाद।
2: जी,

0: तो सालू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ बोलिए।
0: कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी विटामिन के। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन के।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विटामिन के को लॉक करते हैं। और आपको बताएं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा विटामिन सी, ना कि विटामिन के।
1: मैम।
0: ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में की बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: ठक ठक।
6: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
13: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
13: जी गुड्डू कुमार यादव बोल रहा हूँ।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं गुड्डू जी?
13: भाटवा रोड से।
0: भाटवा रोड से? ये कहाँ पड़ता है आपका भाटवा रोड?
13: कुचायकोट से।
0: कुचायकोट। कैसे हैं गुड्डू जी आप?
13: ठीक है, आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है गुड्डू जी आपकी?
13: ग्रेजुएशन तक की है।
0: उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि छोड़ दिए हैं?
13: नहीं बीएड कर रहे हैं।
0: अच्छा बीएड चल रहा है, चलिए बढ़िया है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप अपना।
13: जी पिताजी का नाम उमा शंकर यादव और माता जी का नाम कलपति देवी।
0: जी तो गुड्डू जी लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
13: हाँ लीजिए।
0: ओके,

0: तो गुरु जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, गोविंद सागर झील का संबंध किस बांध से है? गोविंद सागर झील का संबंध किस बांध से है? ऑप्शन ए है टिहरी बांध, बी है भाखड़ा बांध और सी है सरदार सरोवर बांध। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सरदार सरोवर को ठीक चाहिए।
0: प्योर है?
1: प्योर तो नहीं है लेकिन ठीक चाहिए।
0: ओके तो चलिए गुड्डू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा भाखड़ा बांध। जी हेलो क्रूज कौन? हेलो।
2: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: जी
0: नाम बताइए अपना और कहाँ से?
2: जी मैं विमल कुमारी बोल रही हूँ लाइन बाजार से।
0: जी कैसी हैं विमल जी?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो पढ़ाई करती हैं आप?
2: हाँ पढ़ाई कर लिए है।
0: अच्छा फाइनल है?
2: हाँ अभी फिलहाल बंद है।
0: अच्छा कहाँ तक हुई है पढ़ाई आपकी?
2: ग्रेजुएशन तक।
0: ग्रेजुएशन करके छोड़ दी है?
2: हाँ।
0: तो आज के प्रश्न के लिए तैयार हैं आप?
2: जी मैम।
0: जी तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए विमल जी।
2: जी मेरे मम्मी का नाम प्रभावती देवी है और पापा जी का नाम श्री रामा जी प्रसाद है।
0: चलिए तो प्रश्न पहला आपसे।
2: जी मैम।
0: जी तो चलिए विमल जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू है अब।
1: आपका आवाज कट गया मैम।
0: तो ऑप्शन फिर से बोले।
1: आपका आवाज नहीं सुनाई दिया शुरू में।
0: क्वेश्चन नहीं सुनाई पड़ा
1: जी।
0: क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छब्बीस जनवरी 1950।
0: श्योर है
1: जी?
0: लग कर दो
1: जी मैम।
0: ओके तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, बी थार और सी गोबी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी ऑप्शन बी
0: थार मरुस्थल।
1: मेरा आवाज में थोड़ा फोन कट कट के आ रहा है ना, तो नहीं सुन पा रहे।
0: तो ऑप्शन फिर से बोले
1: जी।
0: ऑप्शन ए है सहारा मरुस्थल, बी है थार मरुस्थल, सी है गोबी मरुस्थल।
1: बी लॉक कर दीजिए,
0: थार मरुस्थल को।
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थार मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
1: ओके मैम।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकेशन कॉन्टेस्ट कॉल की।
1: ओके।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170858657।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160602।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ड्यूरिंग जिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
6: जी नमस्ते मैम।
7: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
6: निरंजन कुमार बोल रहे हैं। बताइए
7: निरंजन की रंजन?
6: निरंजन।
7: कहाँ से बात कर रहे हैं निरंजन?
6: बतरदे से।
7: बतरदे
6: जी,
7: ये बतरदे किधर पड़ता है? नाम तो सुना हुआ है।
6: डोली पर खड़े पड़ता है।
7: अच्छा अच्छा,
6: मेरे गाँव का नाम अवरेलू रखा था, बेटरडे।
7: अच्छा,
6: बतरदे हो गया यहाँ। अच्छा, दिन गुजरता था लोग का।
7: ये बतरदे थोड़ा सीधा हो गया, साधारण हो गया है।
6: हाँ,
7: कोई भी बोल सकता है। तो कैसे हैं निरंजन जी आप?
6: अपना सुनाइए।
7: हम भी बढ़िया हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
6: इंटर तक हुई है।
7: इंटर के बाद जारी है कि खत्म, वहीं से छोड़ दिए हैं?
6: छोड़ दिए हैं।
7: इंटर के बाद छोड़ दिए हैं।
6: 2020 में ही इंटर का एग्जाम।
7: अच्छा,
6: उसके बाद कोरोना आ गया, पैसा भी नहीं था एडमिशन कराने के लिए।
7: उस टाइम तो काफी लोगों का पढ़ाई लॉस हुआ है।
6: ऐसा टाइम में मैंने ऐसा ऑनलाइन कराया थे, एक कॉलेज में भेजा था नेचुरल जलाल, तो उसे पैसा 6000 रुपया लग रहा था 8 से दुकाने के लिए। 4000 रुपया लेकर गए थे, नहीं हुआ।
7: नाम आने के बाद 8000 रुपया लग रहा था।
6: 6000 एडमिशन के लिए।
7: लिस्ट में नाम आने के बाद?
6: हाँ, लिस्ट में नाम आने के बाद।
7: फिर तो ये तो बहुत ही ज्यादा लग रहा था।
6: हाँ,
7: क्योंकि हमारे यहाँ तो जो कॉलेज है यहाँ कमला राय है, उसमें तो इतना नहीं लगता है।
6: इधर उतना नहीं लगता है। उधर भेज दिया था कॉलेज।
7: तो आप ऑप्शन में लिए होंगे?
6: उसको लास्ट में डाले थे, 10 ऑप्शन होता है, 10 कॉलेज का डालना पड़ता था।
7: 10 कॉलेज का नाम होता है।
6: और लास्ट में डाले थे, किसी में डाल दिए।
7: चलिए, जो होना था वो हो गया।
6: उसमें जो मास्टर है किधर है बात करना है, निशल साहब, तो सब उल्टा पुल्टा बोल रहा था। ये उन्होंने रोज से घुमा सही है ना घुमा सही, आपकी इस बार छोड़ दीजिए।
7: क्या करते हैं आप निरंजन जी?
6: अभी तो गांव में आए हुए हैं, बाहर आते हैं सूरत।
7: अच्छा, काम करते हैं?
6: हाँ।
7: तभी घर आए हुए हैं?
6: जी
7: जी। रेडियो रिमझिम को कब से सुनते हैं आप?
6: रेडियो रिमझिम को तो हम 2009 से ही सुनते हैं।
7: मतलब जब से इसका स्थापना हुआ तभी से?
6: क्या?
7: जब स्थापना हुआ रेडियो रिमझिम का तभी से आप सुनते हैं?
6: हाँ हाँ, अभी छोटे हम सब से पांच क्लास से पढ़ रहे थे। रेडियो रिमझिम दिन में दो तीन बार बंद हो जाता था।
7: दो बार बंद?
6: हाँ, तो बढ़िया से सुनते थे। जब स्टार्ट होता था भक्ति गाना बजता था।
7: अभी भी बजता है ना? जी जी। तो हेलो
6: जनरेटर की भी आवाज सुनाता था। जनरेटर जो चलता था उसका आवाज ही सुनाता था पहले।
7: कभी कभी आता था।
6: हाँ, तो उस टाइम से ही सुन रहे हैं।
7: चलिए बढ़िया है। तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं इससे पहले?
6: हाँ, कॉल तो बहुत बार किए।
7: अच्छा, तो लिया जाए आपसे आज का प्रश्न है। जी तो निरंजन जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
6: माताजी का नाम श्रीमती जनमती देवी और पिताजी का श्री सुमन माजी।
7: तो निरंजन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख, सी शिक्षक। आपका समय श्रोता अब।
1: मूर्ख होगा।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक कर दो।
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मूर्ख को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? ऑप्शन ए
1: विटामिन सी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: चलिए तो चलिए निरंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर विटामिन सी लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? श्योर है? ओके। तो चलिए निरंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? चौथा प्रश्न आपसे ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, बी थार मरुस्थल, सी गोभी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: थार।
0: क्यों है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थार मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा सहारा
1: मरुस्थल।
0: भारत का है, हम विश्व का पूछे हैं।
1: अच्छा विश्व का।
0: कोई नहीं, नेक्स्ट संडे फिर कोशिश करिएगा।
1: ठीक है
0: ठीक है। हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 1100।
8: ओम
6: नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम हर हर

0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: रुपेश कुमार जादवपुर से।
2: रुपेश?
1: हाँ
2: जी। कैसे हैं रुपेश जी?
1: ठीक है।
2: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
1: अभी 12th क्लास का चल रहा है।
2: जी 12th का पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
1: ठीक चल रहा है
2: जी। तो अभी क्या कर रहे थे आप?
1: कुछ नहीं, कॉल ही लगा रहे थे।
2: ओके, और पढ़ाई करके आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
1: अभी तो नहीं सोचे हैं।
2: अभी नहीं सोचे हैं। चलिए, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले भी कॉल किए हैं आप?
1: हाँ किए हैं।
2: किए हैं, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: मेरे माता जी का नाम श्रीमती सुमिता देवी और पिताजी का नाम श्री संजय प्रसाद चौरसिया।
2: जी, तो क्या करते हैं पापा जी आपके?
1: फार्मर है, किसान है।
2: अच्छा, चलिए तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
1: जी
2: जी, तो रुपेश जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगणमन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वंदे मातरम ऑप्शन बी।
0: श्योर है? चलिए तो लॉक करूं। ओके तो रुपेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर वंदे मातरम बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए? दूसरा प्रश्न आपसे ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी टेलीफोन, सी कंप्यूटर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन डी को
0: टेलीफोन। श्योर है? ओके तो चलिए रुपेश जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी टेलीफोन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा कंप्यूटर। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: गणेश कुमार सीते नारायण सिंह।
0: कैसे हैं गणेश जी?
1: बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
1: पढ़ाई तो 7th क्लास तक हुए है।
0: तो गणेश जी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट को कॉल किए हैं, तो तैयार है आप आज के प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
1: मम्मी के पापा का नाम श्री सुभाषन पंडित, मम्मी का नाम श्री कुमार देवी।
0: तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
1: जी
0: जी,

0: तो गणेश जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम और ऑप्शन सी विजय विश्व तिरंगा। आपका समय शुरू है अब।
1: बी वाला को लॉक करिए।
0: बी वाला को
1: जी।
0: वंदे मातरम
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करो?
1: नहीं, कर दीजिए।
0: चलिए तो गणेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वंदे मातरम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी,
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन के कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन सी कर दीजिए।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करो?
1: जी, कर दीजिए।
0: चलिए तो गणेश जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विटामिन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लुक्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाजत और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87-894-18-744।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
7: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
5: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के, शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी, चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। समय 9:24 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोग के बीच हर रोज़ हम तो बताते ही हैं पुराने गाने का फरमाइश करना है, तो आप लोग अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम दर्ज करना है और सेंड करना है हमारे नंबर पे। कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप, और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूं, तो बिल्कुल हम तो बढ़िया हैं, अपना बताएं। और फिलहाल स्वागत है आपका रोहित जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली गोपालगंज से और गाना सुनना है रोना चाहे रोना पाए। उदित नारायण जी की आवाज़ में तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है और हमें लगता है कि आपकी फरमाइश हम तो इस सप्ताह सुनाए हैं। खैर अभी फरमाइश नहीं पहुंचे हुए तो आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर देंगे। आगे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू, हाय सोनू बाबू, हम भी हैं, टाइम से ही हैं, साथ में जुड़ गए हैं, कैसे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से और बने रहे हमारे साथ और अंत तक। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप कौन, अपना परिचय दें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गाने के साथ, उदित नारायण जी की आवाज़ में, रोना चाहे रोना पाए, दिल कितना मजबूर है।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम छेम 90.4 एफएम पे सुन रहे थे और शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश या 90s के गाने की फरमाइश करना है। यहाँ पे कुछ और भी मैसेज पहुँचे हुए तो आगे मैसेज शामिल किया जाए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर हम एक सप्ताह बाद एसएमएस किए हैं और गाना सुनाने के लिए थैंक्स सर। चलिए कोई बात नहीं और आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए सफरोज अली जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल में तुझे बिठा कर। सुरेश शाह जी तिरबिरवा से मैसेज करते हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे अभी। और कुछ और भी मैसेज है तो देख ले। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार, राधे राधे सर जी, मुझे गाना सुना दीजिए सर। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, संग्राम मूवी से सुजीत कुमार, प्रेम नगर, बस्तरा राजा, लालगंज, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश 63 से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि चलिए भाई आपका विचार अच्छा है और दर्द भरा सॉन्ग भी है, ऐसी क्या बात है। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हाय पिठौरी से भागमनी यादव, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहा हमारे साथ। बढ़ते आगे और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा, लिखा गया कि हेलो नमस्ते भैया कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी जुड़ गई हूँ शो से और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ा जाए, अब मैसेज तो आते रहेंगे, गाने भी सुनने हैं। तो अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं सुरेश शाह जी की, दिल में तुझे बिठा कर लूँगी बंदे आँख।

कभी प्यारा संग रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे सुन रहे थे अभी हम सभी। और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का है, और आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने के फरमाइश करना है, 90s या ओल्ड इज गोल्ड ऐसे गाने का फरमाइश करना है, ताकि आपकी फरमाइश हम पूरा कर सके। हमारे श्रोतागण हैं जिनका मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, और इनका नाम है मुकेश साहनी, भैरवगंज वेस्ट चंपारण से जुड़े हुए हैं, और कहते हैं कि भजन सुनना था। पूनम शर्मा का तो आप लोग से हम कई बार पहले बताए हुए हैं कि भजन नाथ शरीफ और कव्वाली की फरमाइश ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यह बहुत कम समय का कार्यक्रम बना हुआ है और जनरल गानों के लिए, मनोरंजन के लिए बना हुआ है, और आप लोग इसमें नाथ शरीफ, भजन, कव्वाली और निर्गुण की फरमाइश करते हैं तो वो थोड़े लंबे समय के होते हैं और लंबे समय हम दे नहीं पाते हैं। इससे अच्छा है कि आप जनरल गाने का फरमाइश करें, साधारणतः आपकी फरमाइश हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और आगे गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं। हमारे श्रोतागण हैं जिनका नाम है सुजीत कुमार, प्रेम नगर बस्तरा राजा लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और गाने की फरमाइश करते हैं बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, संग्राम मूवी से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर लजवाब सॉन्ग, मैसेज करती है रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, ठीक है भाई आपका भी फर्ज है कि आप दिल और दिमाग में बैठा कर पूजा करें, बहुत अच्छा विचार, अच्छा लगा, थैंक्स, मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय नाइस सॉन्ग, मैसेज करती हैं शिल्पी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए, बिल्कुल लेके करके फरमाइश तो पूरा कर ही रहे हैं, आपकी भी फरमाइश हम पूरा कर देंगे, थोड़ा सा सब्र करें। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने को प्ले करते हैं, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो।

0: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे, और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि ये ठीक बात है भाई, दोनों तरफ बराबर की चाहत है, बेचैनी है तो अब किस बात का डर है, आगे बढ़े और अच्छा लगा शाम। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है निशा के तरफ से, और इनके तरफ से गाने की बोल दी गई है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। और चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेमछिप 90.4 एफएम पे।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम झीम 90.4 FM पे सुन रहे हैं। हम सभी और शो चल रहा है SMS फरमाइश का। यदि आप इस कार्यक्रम से बने हुए तो बिल्कुल थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है कि करके सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो आगे मैसेज शामिल किया जाए। और लिखा गया है कि करती थी मोहब्बत की बातें मुझसे, मुझ पर अपना हक भी जताती थी, वो मेरे अलावा किसी और से भी बात करती थी और उसे अपना दोस्त बताती थी। बड़रिया थाना क्षेत्र बालापुर से जुड़े हुए सनोज कुमार जी और कहते हैं कि अपने पसंद से कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि ये गलत बात है, आज के ज़माने में चिपके चिपके मिलना संग्रह है, जनहित में जारी। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सोनू जी ये वाला गाना ज़रूर सुना दीजिएगा, दोस्ती फिल्म का तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं मुकेश चाहनी जी, तो आप पहले गाने की फरमाइश किए रहते तो अब तक गाने आपके सुना चुके रहते, चलिए इसके बाद हो सके तो आपकी फरमाइश हम पूरा कर दें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम झीम 90.4 FM पे सुन रहे हैं, हम सभी और सोशल लाइफ में फरमाइश कर। अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे गाने को चेंज करते हुए मुकेश साहनी जी करते हैं भैरवगंज वेस्ट चंपारण से, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है दोस्ती फिल्म का, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नाइस गाना, और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे, और इस मैसेज को करती हैं फिलहाल पटना से। तो चलिए आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और तो आपकी फरमाइश तो हमने पूरी कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, आप गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे सुन रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड और दोस्ती मूवी से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और ये भी मैसेज ओल्ड इज गोल्ड गाने के साथ ही पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को पहुंचाते हैं सौरभ जी घर देवरिया गोरखपुर से और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है किशोर कुमार का। गाने का बोल है तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप ही के फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करेंगे। आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज देख ले। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि पढ़ने वाला भी तेरा दीदार करेगा, एक बार नहीं 100 बार पढ़ेगा। मैं लिखूंगा जब शायरी तुझ पे, मेरी डायरी का एक एक पन्ना भी तुझसे प्यार करेगा। भड़ड़िया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी। तो बिल्कुल लिखते रहिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग ओल्ड इज गोल्ड और इस मैसेज को करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि बहुत ये सॉन्ग दोस्ती के लिए मिसाल है, एक लंगड़े और एक अंधे की दोस्ती से हमें सीख मिलता है, देखे दोस्ती को, मस्त सॉन्ग। और लिखे हुए कि बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहे हैं तो ड्रीम गुड नाइट। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग, बिल्कुल सुपर सॉन्ग ही सुन रहे थे और आगे भी सुपर सॉन्ग ही सुनना है और कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त भी करना है हमें। तो आप सब बने रहें, अंतिम गाने को एंजॉय करना है और हम भी अंतिम गाने एंजॉय करके ही जाएंगे। तो सुनते हैं और फिर अगले दिन मुलाकात होती है अगले सप्ताह। तब तक नमस्कार।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ आप सभी के बीच आपके पसंदीदा कार्यक्रम के साथ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है हमारे इंस्टा, व्हाट्सएप और कॉल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782891 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277166696। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं। तो मैं आप सभी के लिए अपनी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ। गाना सुनिए और बताइए आपको गाना कैसा लगा। गाने के बोल हैं मस्ताना, मौसम है रंगी नजारा।

तो कैसा लगा आप सभी को ये गीत? मैसेज के द्वारा आप बता सकते हैं। और चलिए, हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, विजय कुमार रूस से हैं, जो लिखते हैं मुझे गाना सुनना है। तो जी बिल्कुल, आपको गाना सुनाया जाएगा और गाने के बोल हैं, हर दिल जो प्यार करेगा। तो बहुत ही खूबसूरत गाने के बोल हैं। तो चलिए प्ले करते हैं इनके द्वारा ये सॉन्ग।

0: तो ये खूबसूरत से गाने के साथ चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के तरफ और मिलते हैं आपसे फिर ब्रेक के बाद।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 22 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। तो हमारे पास मैसेज पहुंचे हुए हैं रामविलास गवरिया उत्तर प्रदेश से, जो कि लिख रहे हैं मुझे भी एक गाना सुनना है। तो जी बिल्कुल, आपको सॉन्ग सुनाया जाएगा और गाने के बोल हैं काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है रामविलास जी की तरफ से। तो चलिए इस गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके द्वारा ये प्यारा सा फरमाइश।

अभी आप लोगों ने सुना रामविलास जी की तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था। तो चलिए इस गाने के बाद बढ़ते हैं आगे और अगली फरमाइश की तरफ। तो हमारे पास एक मैसेज पहुंचा हुआ है सुनील कुमार पश्चिम चंपारण से, लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। तो जी बिल्कुल आपको गाना सुनाऊंगी। गाने के बोल हैं परदेश जाके परदेसिया। तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनील जी की तरफ से। तो चलिए प्ले करते हैं इस गाने को और सुनते हैं इनके द्वारा फरमाइश की गई ये सॉन्ग।

0: तो इसी खूबसूरत से गीत के साथ लेते हैं अभी छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रा

0: काउंट पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852728291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो
1: जी, नमस्ते दी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना।
1: पूजा कुमारी।
0: और कहाँ से हैं पूजा जी?
1: तिरवीरवा से।
0: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: एक खेसारी लाल का गाना सुनना है, भजपुरी सॉन्ग।
0: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग है? साड़ी वाला करिए ही सड़िया
1: कमर में टांगी भाई। अच्छा। साड़ी वाला कौन गाना है?
0: कौन? जी जी। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: सबको।
0: चलिए, और सब बढ़िया है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: तो आपके द्वारा गाना प्ले कर दिए हैं और सुनिए फिर अपने फरमाइश को। शो में कॉल किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, सलाम अलैकुम।
1: नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी जी मैम।
1: हाँ जी,
0: हम जावेद आलम ग्राम धनखड़ से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बहुत अच्छा है, अपना बताइए मैम। काफी समय के बाद इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ मैं।
1: अच्छा जी,
0: लेकिन पहले अफसर भैया थे, सोनू भैया थे, डायरेक्टर सब थे, काफी समय से जुड़ते थे। आज का समय नहीं मिल रहा है कि मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ।
1: कोई नहीं,
0: इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे।
1: नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब अपना भी तो काम देखना है ना इसी में।
0: जी जी, लेकिन बेहद मुझे खुशी होती है कि रेडियो रिमझिम हमारे गोपालगंज जिले में प्रगति करे, तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। एक समय था, एक दिन था कि हम लोग बिहार में ही केवल रह के सुनते थे, आज एफएम के माध्यम से हम कोई भी देश और विदेश में भी रह के हम सुनते हैं। और आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और डायरेक्टर सर को भी अपने दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा। आप लोग की बदौलत है कि इंडिया के कोई भी कोने में रहे, चाहे विदेश से कोई भी कोने में, लेकिन आवाज रेडियो रिमझिम की आती है तो दिल बहुत अच्छा लगता है और सुनने का भी अंदाज ही कुछ अलग होता है।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो रेडियो सुन के आपको अच्छा लगता है रेडियो रिमझिम, तो
0: और मैं आज गाना का फरमाइश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं सुनाना चाहता हूँ ऑल रेडियो रिमझिम को।
1: जी जी,
0: और अफसर भैया को, सोनू भैया को और आपको मैम, जितने हमारे मतलब आरजे हैं सभी के साथ, और कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे मित्र हैं
1: जी,
0: उनको मैं थोड़ा बहुत नाम लेना चाहूँगा।
1: बिल्कुल, पहले गाने की फरमाइश बता दीजिए।
0: जी जी, मैं थोड़ा सा गुनगुना के मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे दोस्त हैं, हमारे सऊदी अरबिया में भी रह के सुनते हैं, उनको मैं सुनाना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल,
0: हमारे नूर आलम भाई हैं सऊदी अरबिया से, मलेशिया से है अमीरुल हसन, तेजपुर आसाम से सगीर आलम, उपेंद्र जी हैं सिहरवा गांव से जो रहने वाले हैं, उनको मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। और जितने हमारे रेडियो रिमझिम को साथ दे रहे हैं मैसेज के द्वारा और सुन के और वॉइस मैसेज और वॉइस के द्वारा, इन सभी के साथ मैं डेडिकेट करना चाहूंगा और थोड़ा बहुत मैं गुनगुनाना चाहूंगा इस गाने को।
1: जी बिल्कुल, गुनगुना दीजिए।
0: जी जी, जो बीत गए जो दिन अब दौर न आएगा, जो बीत गए जो दिन अब दौर न आएगा, एक तेरे सिवा कोई और मुझे और न आएगा, मुझे चैन न आएगा। बस इतना ही मैं गाऊंगा और आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, फिर कभी समय मिलेगा तो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और हंसते हंसाते इस कार्यक्रम को सुनते हम रहते हैं और सुनते रहेंगे। और हमारे जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी सुन रहे हैं, अगर जहाँ तक अच्छा लगा तो उनको मैं, मेरे टाइमिंग रहेगा फीडबैक के लिए, मैं सुनने के लिए मैं इंतजार करूंगा।
1: जी जी बिल्कुल, आपके गाना को प्ले कर दिया गया है और तब सुनते रहिए अपने गाने को सभी के साथ।
0: जी जी, शुक्रिया
1: रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 96-56-59-536 या 96-56-57-902।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास यहाँ एक कॉल के माध्यम कॉल पहुंचा हुआ है, तो चलिए करते हैं रिसीव कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। नाम बता दीजिए अपना। और कहाँ से हैं आप? जी, तो कौन सा गाना सुनना है? और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: नो,
0: सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: सुनना है मुझे और किसी को।
0: अच्छा जी, चलिए कोई नहीं, तो ये गाना प्ले कर दिए हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, सही यारा तू तो बदला नहीं है। और हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है

यूपी सुल्तानपुर से, यूपी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिल्म का नाम होगी प्यार की जीत, और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनवा दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपकी गाने को सुनाएंगे। और गाने के बोल हैं, मैं तेरे प्यार में मर जावा। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग शत्रुधन जी की तरफ से। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत और इंजॉय करते हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो चलिए, हमारे पास एक कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
0: जी। हेलो जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। जी नाम बता दीजिए अपना। अच्छा, और कौन सा गाना सुनना है आपको? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी बोलिए। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है? अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं और सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।

0: सॉन्ग सुना आज हम लोगों ने, दिल तेरा आशिक। अभी हमारे पास कॉल के माध्यम से एक और फरमाइश पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं इनकी। हेलो जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: रामाजी प्रसाद खावे राजन मार्केट से।
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, आज तो धूप नहीं क्या अच्छा लगता। बरखा होता कि ना उन्हें?
0: ना, अभी तेने बारिश नहीं किया होत।
1: बारिश तो नहीं करो, लेकिन बारिश तो अच्छा लगता, हवा बहुत आ।
0: आज मौसम बहुत सुहाना भइल बा।
1: हाँ तो गाना सुना दे।
0: तो बता दी।
1: दुल्हन बारी पे मार निरहुआ सटल रही,
0: जी
1: गाना ये बात, दुल्हन बारी पे मार निरहुआ सटल रही।
0: और गाना क्यों के सुनाऊं के बा?
1: हाँ मने रवा माने जितना लोग सुन रहे थे और इन सब कोई बा।
0: और ये सब ठीक बानू?
1: सब ठीक ठाक बा।
0: चले फिर, और गाना प्ले कर दिल बानी, सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते।

हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज पहुंचा हुआ है, जो लिख रहे हैं भारती जी, हमारा मैसेज हुआ नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? जी अभी तक तो कुछ दिक्कतों के कारण किसी का मैसेज दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब सभी का मैसेज दिखाई दे रहा है और सभी के मैसेज मैं एक एक करके पढ़ूँ।

0: ए भाई, लड़की पागल लगती है, इसका दिमाग ठीक नहीं है क्या?
1: हम पागल लोग का थी?
0: उल्टा सीधा इल्जाम हमारा पर लगाती हो। अरे तुमको पता नहीं है कि हम गांव-गांव में ऐसी योजना चलाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान की छवि बदल के रख देंगे, समझी?
1: अच्छा।

0: और यहाँ सन्यासी जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, हमारा मैसेज खोइंचा में बांध दे ले वाणी का धनार, और मैसेज खोइंचा में नहीं की बांध ले, सब क्यों के मैसेज एक एक करके पढ़े।
1: ये काम तो पहले करी है,
2: समझ रही हो ना? हाँ, हाँ। अब तुमको लग रहा है कि तुम लाइन पे आ रही हो,
1: लगा तो कुछ काम करवा।

0: मूला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-22-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले मैसेज कोई शो नहीं कर रहा था इसीलिए मैं नहीं पढ़ रही थी, लेकिन अब सारे मैसेजेस शो कर रहे हैं तो सभी के एक एक करके मैसेजेस पढ़ूंगी। और हमारे पास एक मैसेज पहुँचा हुआ है जिनका नाम रितेश पांडे है और लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन्हें भी एक गाना सुनना है तो गाने के बोल है जाए चंदा ले आव खबरिया, बहुत ही प्यारा सॉन्ग। तो चलिए प्ले करते हैं इनके ये प्यारे से सॉन्ग को और सुनते हैं ये सॉन्ग।

और आप सभी को बता दूं कि मैं आप सभी के बीच नई नई जुड़ रही हूं, तो आप सभी अपना नाम मेंशन करते रहे ताकि मुझे पता चले कि आप कौन हैं और कहां से हैं।

और हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहा है, मैं हंसराज राजस्थान जिला हनुमानगढ़ गांव मेरा रावत सर है, सभी को जय शनिदेव जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका।

तो अभी आप लोगों ने सुना रितेश जी की तरफ से ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जाए चंदा ले अब खबरिया। तो चलिए पढ़ते हैं अगले फरमाइश की तरफ और पढ़ते हैं इनका मैसेज। तो हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है नौशाद अली मोतिहारी ज़िला से, लिख रहे हैं भारती जी हमारा भी मैसेज शामिल कर लीजिए। तो जी बिल्कुल, दिन गाना सनी जी नहीं बजाएं तो इसलिए मैसेज डिजिटल कर दिए, और बाहर से भी हो गया सोनी जी से, बहस भी हो गया सोनी जी से। अच्छा जी, मैं नौशाद अली मोतिहारी ज़िला से, मुझे गाना सुनना है नागिन फिल्म का, तेरे संग प्यार नहीं तोड़ना, कितनी बार मैसेज कर दिया हूँ। तो जी बिल्कुल, आपकी मैसेज, इसके पहले किसी के मैसेज नहीं दिखाई पड़ रहे थे लेकिन अभी दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं सबके मैसेजेस पढ़ रही हूँ। और इनकी तरफ से जो गाने की फरमाइश है तेरे संग प्यार में, तो चलिए प्ले करते हैं और इनके गाने को और सुनते हैं नौशाद अली जी की तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग। तो गाने को प्ले कर दिए हैं, इंजॉय।

हमारा गाना बजा दिया और हमारा गाना बजाकर चांद चार चांद लगा दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया।

और हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है यहाँ। हाय मैम, सभी को मेरा नमस्ते। और ये बनारस से अनिल कुमार जी हैं जो मैसेज किए हुए हैं। और यहाँ एक शायरी भी है। अच्छा जी, लिख रहे हैं, सभी के अनुभव का स्वागत कीजिए, पता नहीं किसका अनुभव आपका जीवन बदल दे। तो जी

0: तो अभी मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक रखिए अपना ख्याल। और
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
10: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
10: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
8: और 90971602।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले। यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंचा हुआ है, तो लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: कैसे हैं मैडम जी?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं आप बताइए।
1: नाश्ता हो गया आपका?
0: जी जी, मेरा तो नाश्ता हो गया है।
1: पानी पी ली बोलते बोलते?
0: ना, प्यास तो लगते बाल, लेकिन पीनी है पानी, फिर पी लें। तब रवा लोगिन ठीक बानी ना?
1: हाँ ठीक बान सब, बिल्कुल अच्छा।
0: तो बता दी कौन से गाने के फरमाइश बा आज?
1: गाना सुना दे, सत्यम श्याम सुंदरम।
0: और गाना क्यों के डेडिकेट भी बा?
1: अफवाह जितने रेडियो रिमझिम मारते हैं, जब सोता सुनते हैं।
0: अच्छा,
1: सब दोस्त के साथ।
0: चलिए ठीक बात, तो फिर और गाना प्ले कर दिलवानी, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।

और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है देवराज कुमार जी की तरफ से, जो लिख रहे हैं, राधे राधे भारती जी, मैं देवराज कुमार रेशम नगर भगैया जिला गोंडा झारखंड से, रेडियो रिमझिम के सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे बोलिएगा जी, आपकी तरफ से सभी को राधे राधे बोल दिए हैं। और आज मैं आपके प्रोग्राम से पहली बार जुड़ रहा हूँ, हाजिरी लगा दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपकी भी हाजिरी लग चुकी है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। वैसे आपका ओपनिंग सॉन्ग लाजवाब था जी, इसके लिए धन्यवाद।

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रही है, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सोनी जी और भारती जी, मैं जुड़ गया हूँ और ओपनिंग सॉन्ग बढ़िया लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आपका तो नाम नहीं पता, इसीलिए मैं सभी से बार बार कह रही हूँ प्लीज़ अपना नाम मेंशन करें ताकि मैं आप सभी को जान सकूँ।

बहुत ही प्यारा सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम अभी आप लोगों ने सुना लता मंगेशकर जी की आवाज में। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली फरमाइश की तरफ। और हमारे पास व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मनीष रजाक जी। और ये फैजलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और लिख रहे हैं मैं भी यहाँ जुड़ चुका हूँ योर वॉइस योर चॉइस में आपके साथ। और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुना दीजिए। तो जी बिल्कुल आपको गाना सुनाया जाएगा और इनका इनकी फरमाइश लिंक के थ्रू पहुंची हुई है और गाने के बोल हैं दिल देने की रुत आई है और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मनीष रजाक जी की तरफ से। तो चलिए सुनते हैं इनकी तरफ से ये प्यारा सा गीत।

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, मैसेज पढ़िएगा जरूर जी। बिल्कुल आप ही के मैसेज पढ़ रही हूँ। और लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, हम राम कुमार राम बालाघाट से, बालाघाट MP से। मुझे भी एक गाना सुनना है स्नेहिया लगावल पवन जी की आवाज़ में। गाना हम सुनवाना चाहते हैं, सुभाष भाई जी हैं, चंदन बालवीर एक दो भाई और हैं, थोड़ा सुनवा दीजिएगा प्लीज़। तो जी बिल्कुल आपको गाना सुनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है उपेंद्र शर्मा जी की तरफ से, जो लिख रहे हैं सॉन्ग सुनाना चाहते हैं राज फिल्म का सॉन्ग। तो जी, राज फिल्म में तो बहुत सारे सॉन्ग हैं, आप मुझे बता दीजिए उसमें से आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9774186164।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं मैसेजेस की तरफ और लेते हैं सभी के मैसेजेस। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनीस यादव जी, और ये अनीस यादव जी विलेज डुमरा यदवंशी टोला डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से जुड़े हुए हैं और खान ग्लोबल स्टूडियो पटना के नीट के स्टूडेंट हैं। और लिख रहे हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जी बिल्कुल आपकी बात सही है भारती मैम, आपके प्यारे से रेडियो रिमझिम के माध्यम से सभी श्रोता को मेरे प्यार भरा नमस्कार। आपकी मधुर आवाज हर दिन दिल को खुश कर देता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। और

0: और हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है प्रबल प्रबल प्रताप सिंह, जो मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपका भी सॉन्ग प्ले करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ कॉल तो आया था लेकिन अभी कट गया, तो फिर से आ रहा है। चलिए लेते हैं कॉल। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैं गाना रिक्वेस्ट करना चाहूँगी।
0: जी गाना तो सुनाऊंगी, नाम बता दीजिए पहले अपना।
1: मेरा नाम मोहम्मद वकास है।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: मैं स्कॉटलैंड ग्लासगो से। आपको नमस्ते कहना।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नमस्कार।
1: और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है,
0: इसके लिए दिल से है आपको धन्यवाद।
1: मैं गान सुनना चाहता हूँ, दिल तो पागल है और गाना है थोड़ी सी सूरज।
0: भोली सी सूरत।
1: हाँ, गाने का नाम है भोली सी सूरत, कॉमन मूवी दिल तो पागल है।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना है सारे लिसनर्स को।
0: ओके, तो चलिए प्ले कर दिए हैं आपका ये खूबसूरत सा गीत भोली सी सूरत। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। बाय। नमस्ते।

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्कार, मैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी धनेश कुमार मिश्रा जी। लिख रहे हैं कैसी हैं और सोनी जी कहाँ हैं। तो मैं ठीक हूँ और सोनी जी अभी फिलहाल छुट्टी पे हैं क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरी काम है। और लिख रहे हैं मेरे से कोई गलती हुई है क्या, तो नहीं जी आपसे कोई गलती नहीं हुई है,

और यहाँ हमारे साथ अबेद खान जी भी जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। जी बिल्कुल, आपको गाना सुनाया जाएगा और बहुत बहुत स्वागत है आपका।

तो अभी आप सभी सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा गाना, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और मैसेज था प्रबल प्रताप सिंह जी की तरफ से, और सॉन्ग है जीना है तो हंस के जियो, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए सुनते हैं इनकी तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग।

और हमारे पास यहाँ सन्यासी जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं नमस्कार प्रणाम बार रुआ के। तो जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और लिख रहे हैं हमार मैसेज पेटी में बंद कर दे ले बानी का तो ना रौरा तो राउर तो मैसेज अभी पढ़नी है फिर दोबारा रुआ के स्वागत कर देता नहीं।

0: अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जीना है तो हंस के जियो। तो इसी सॉन्ग के साथ अभी लूंगी एक छोटा सा ब्रेक और दोपहर न्यूज़ के बाद फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक आप सभी भी जा कुछ देर आराम कर लीजिए और खाना खा लीजिए।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है।
8: इंडिया टू फेस इंग्लैंड इन फिफ्थ एंड फाइनल T20 इंटरनेशनल इन साउथहैम्पटन, इंग्लैंड दिस इवनिंग, एंड इन फीफा वर्ल्ड कप नॉर्वे टू टेक ऑन इंग्लैंड इन अर्जेंटीना टू फेस स्विट्जरलैंड इन क्वार्टर फाइनल्स टुनाइट। For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
9: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
10: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
9: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
11: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
9: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
11: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
9: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
11: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
11: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
9: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
11: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
9: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
12: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
9: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
13: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई-बुक का एक्सेस है।
9: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
14: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में शामिल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
9: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
15: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
9: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
16: ठक ठक।
17: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
18: अच्छा मिला ही नहीं।
17: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
19: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
17: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
19: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
20: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
21: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
22: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
21: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
22: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
21: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
22: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
21: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
22: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
21: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
22: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
18: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
0: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
18: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
1: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करे 8570-32042 पे।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9939365923।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
11: कॉल करें 7070-7563 या 7070-7542 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852778291। जी हाँ, 9852788291। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277166596। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं सभी के मैसेजेज, जो यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है बसंती देवी, जो कि लामी चौर की रहने वाली हैं और चबरिया टोला से। तो लिख रही हैं, कोशिश करो कोई आपसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे, दोस्ती किसी से भी हो उसे ऐसा निभाओ कि उस दोस्ती का डोर जिंदगी भर ना छूटे। ये तो बात सही है। हर हर महादेव भारती जी, जी आपको भी हर हर महादेव। शो का शुरुआत अच्छा लगा और हम भी जुड़ चुके हैं, हमको भी गाना सुनवा दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपको भी गाना सुनाया जाएगा। और हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, हमारा भी गाना बजा दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपके गाने को सुनाऊंगी। और लिख रहे हैं, शो तो बहुत मस्त चल रहा है, गाना भी बहुत अच्छा अच्छा बज रहा है। और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा जी सऊदी अरबिया से, तो इनके द्वारा लिंक के जरिए हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है। और चलिए देखते हैं कौन सा गाना है। और गाने के बोल रहे हैं एबलम जी, ओहो, तो चलिए फिर इनके गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

और हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो लिख रहे हैं। हेलो मैम, नमस्कार, मैं विनोद कुमार चौबे विलेज कौवी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

अभी आप लोगों ने सुना मुस्तफा जी के साथ ये सॉन्ग है बलम जी, और इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला मैसेज। और अगला मैसेज है उपेंद्र शर्मा जी की तरफ से, जो लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुना दीजिए, और मूवी नेम है राज। राज मूवी का सॉन्ग सुनना है इनको, तो राज मूवी का कोई भी सॉन्ग सुनना है तो जी बिल्कुल आपको गाना सुनाऊंगी।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852728291। और यदि हम कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेजेस की तरफ। और यहाँ बसंती देवी जो लामी चौर की रहने वाली हैं और इनकी तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और गाने के बोल हैं, तेरे साथ है तो मुझे क्या कमी है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग। और तो चलिए प्ले करते हैं। इनकी फरमाइश को

यहाँ एक मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहा है नाइस सॉन्ग, तो गाना तो बहुत सुंदर है और लिख रहे हैं हमारा गाना भी बजा दीजिए। तो बिल्कुल आपका भी गाना बजाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक बार और बता दूं कि आप सभी आप अपना नाम मेंशन किया कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को पहचान नहीं रही हूँ, तो नाम लिखेंगे तो मुझे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ शुभम कुशवाहा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।

और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है। अनिल कुमार दरभंगा लिख रहा है, नमस्ते भारती जी, मुझे भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। जी अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।

और यहाँ शुभम कुशवाहा जी हमसे जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं, मुझे भी गाना सुनवा दीजिए। और गाने के बोल हैं, पागले बना दी राम जी। और गाना है खेसारी लाल जी का, तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग। तो चलिए इस गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं शुभम कुशवाहा जी के।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: मैं आपका गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बथुआ बाजार से बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है, आप अपना बताइए।
0: हमारा भी ठीक है।
1: तो एक गाना सुनना चाहते हैं।
0: जी बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं।
1: ये दुनिया ये महफिल मेरे कान की नहीं।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: बस यही, आपको, मेरे दोस्त यार जो कोई भी सुन रहे हो उन सबको।
0: जी जी, चलिए तो मैं आपका गाना प्ले कर रही हूँ और सुनते रहिए गाने को। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी।

सुनील कुशवाहा जी मैहर एमपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और लिख रहे हैं, राधे राधे भारती जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, बहुत अच्छा गाना चल रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, इनको गाना बहुत अच्छा लगा है। और भारती मैम, आपका खाना पीना हो गया? तो जी, मैं अभी खाना पीना खा के आई हूँ। और लिख रहे हैं, कसम खा लिए हैं मैं मैसेज ना शामिल करने की, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबका मैसेज एक एक करके शामिल कर रही हूँ। एंजॉय कीजिए गाने को।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा गीत, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला मैसेज। और यहाँ लिखा हुआ है, गुड आफ्टरनून मैम, मुझे गाना सुनना है। और गाने के बोल हैं, या खिड़की जो बंद रहती है। और गाने की फरमाइश करने वाले हैं एजे, यूपी 42 उत्तर प्रदेश से। और मूवी का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की। प्रोग्राम आज बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 12 बजे से ही जुड़ा हूँ लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी प्रस्तुति बहुत बढ़िया है। भारती जी, ऐसे ही आप करती रहिए जी। पूरी कोशिश है हमारी कि मैं और बेहतर कर सकूं। तो चलिए सुनते हैं इनकी तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग। और गाने के बोल हैं, ये खिड़की जो बंद रहती है। और गाने को मैंने प्ले कर दिया है और सुनते रहिए।

और यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती मैडम जी नमस्कार जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, हमारा भी हाजिरी लगा देना मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। तो मैसेज करने वाले हैं गुरु नानक पुरा बठिंडा पंजाब से, किशोर सबलानिया, सावित्री सबलानिया, सुमन सबलानिया, बेटी अंशु, और लिख रहे हैं मुझे भी कोई गीत, मेरा भी कोई गीत शामिल कर लेना। तो आप गाने के बोल बता देते हो तो बहुत ही अच्छा होता।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87-894-18744।

बसंत कुमार जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा पूर्वी सुना। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है गुरु नानक जी, जो कि बठिंडा पंजाब से रहने वाले हैं, और लिख रहे हैं मुझे कोई भी गीत सुना।

और यहाँ प्रेम मधेसिया जी की तरफ से, जो कि पडरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और कह रहे हैं भारती जी हमारा भी मैसेज शामिल कर लीजिए। तो जी बिल्कुल, आपका भी मैसेज शामिल कर लिया है हमने, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं, शानदार गाना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

एक और मैसेज पहुंचा हुआ है राम कुमार राम बालाघाट से, और लिख रहे हैं हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही हैं मैडम जी, तो आपने ध्यान नहीं दिया मैंने आपका मैसेज शामिल किया था। चलिए कोई नहीं, फिर से मैं आपको आपका स्वागत करती हूँ इस शो में।

और हमारी तरफ से आप लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग दिल तो पागल है। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ और मिलते हैं आपसे फिर ब्रेक के बाद।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: कब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, क्या हाल चाल है आपका? और नाम बता दीजिए अपना। हेलो

0: हेलो। आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, थोड़ा साइड में जाइए जहाँ नेटवर्क हो।
1: स्पीकर चल रहा है ना, तो कनेक्ट हो गया था।
0: अच्छा जी, तो बता
1: हाँ,
0: दीजिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: हमने वही लगाया दिल।
0: हमने वही लगाया दिल।
1: हाँ,
0: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है? सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: जो रिश्ते भाई और बहन जुड़े हैं वो सबको सुनाना है।
0: ओके ओके, तो चलिए मैं आपका गाना प्ले कर रही हूँ और सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: यस,
0: रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: खबर। अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा गीत, हमने वहीं लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था। तो चलिए इसी के साथ हमारे पास यहां एक और कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंचा हुआ है और लेते हैं कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। हाँ जी,
1: हाँ जी, धन्यवाद।
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: जी ललन सिंह कुशवाहा।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: यही आपके गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बथुआ बाजार से बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, अभी तो आपने कॉल किया था ना?
1: अभी कॉल किया था, आप मेरा वो फरमाइश चलाया नहीं।
0: जी हमने तो फरमाइश चलाया पर आपने ध्यान से सुना नहीं।
1: नहीं मैं बोला था ये तो, फिर बाद में मेरा लड़का फोन कर करके फिर वो अपना फरमाइश गाना चलवा दिया।
0: जी
1: मेरा फरमाइश था वो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।
0: तो ये गाना तो मैंने चला दिया है लेकिन आपने सुना नहीं और सभी लोगों ने आपके गाने को बहुत ही एंजॉय किए।
1: नहीं ये तो मैं आपके रेडियो
0: जी, यहाँ तो हमारे पास आपके गाने के लिए बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका गाना बजाया है और आपने आप ही को सुनने में गलती हुआ है। ओके चलिए कोई और गाना बता दीजिए, मैं आपके लिए प्ले कर दूंगी।
1: ये क्या नाम है, छुपा रुस्तम का एक गाना चला दीजिए। अरे वो सारी बाबू
0: क्या,
1: छुपा रुस्तम का गाना एक चला दीजिए।
0: ओके
1: अरे वो सारी बाबू मुझे माफी दे दे तू।
0: और ये गाना मैं प्ले कर रही हूँ और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं और सारे लोगों का भी फरमाइश पूरा करना है और हमारे पास टाइम नहीं है।
1: ठीक है ठीक है,
0: तो आपका गाना प्ले कर रही हूँ, अभी जस्ट प्ले कर रही हूँ और आप सुन लीजिएगा। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और यहाँ हमारे पास धनेश मिश्रा जी की तरफ से एक शायरी पहुँचा हुआ है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और लिख रहे हैं, प्यार को जब प्यार से प्यार हुआ तो प्यार ने प्यार को पूछा प्यार कैसे होता है, तो प्यार ने प्यार को कहा जो इस फरमाइश इस प्यारी सी शायरी को पढ़ रहा है, प्यार उसके जैसा प्यार होता है। ओहो, तो बहुत बहुत धन्यवाद।

तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788991, और कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से विदा लूँगी, और सुनते रहें ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: बस बस।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महा

यह मेला रूपी संसार के छोड़ करके जे भी कोई जाला उना जाने कहां बस जाला कहां छिप जाला। हमनी ओकरा के बार बार खोजिला लेकिन जे चल जाला उ दोबारा कबो लौट के ना आवे।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कोलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम।
8: सुनो दिल से।

कि दुनिया माया के बाजार बा, यहाँ केहू के केहू नइखे। भाई बहिन बाप माई सगे संबंधी झूठो के एगो रिश्ता नाता बा कहे खातिर, सभे आइल अकेले बा और जाई अकेले।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: कोशिश बा कि ना हो बट आगे के पता नहीं।
1: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला कि ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
8: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज।
10: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
12: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
11: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
11: संपर्क करें 9939365923।
14: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
14: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
15: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
16: All right.

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973। कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973। कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH-27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-75-42-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
5: और 90-97-61-60-02।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम।
8: सुनो दिल।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम,
4: सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर

0: 4498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी, मैं लालन पासवान बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस बढ़िया जी, अपना सुनाइए।
2: हमारा भी ठीक है।
1: मौसम कैसा होगा मैडम?
2: बारिश हो रहा है इधर। आपकी तरफ नहीं हो रहा है क्या?
1: नहीं नहीं, अभी तो नहीं हो रहा, बादल छाया हुआ है।
2: नहीं तो यहाँ रात से ही बारिश हो रहा है।
1: इधर तो भी बादल छाया हुआ है, बारिश हुआ था अभी नहीं हो रहा।
2: और सब ठीक है ना?
1: हाँ सब बढ़िया जी।
2: तो भोजन हो गया है?
1: हाँ भोजन हो गया है, अभी ड्यूटी में है।
2: अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: मुझे संगीत फिल्म का गाना सुनना है।
2: कौन सा गाना?
1: संगीत फिल्म का उड़ी उड़ी उड़ता जा, वो गाना नहीं है? मैं पंछी अकेला,
2: हाँ।
1: कोई मिले ना मिले, गाता जाऊं मैं अकेला
2: जी। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी आपको और सभी श्रोतागण, मेरे भाई जितने भी रेडियो सुनने वाले हैं और मैं और मेरे समस्त परिवार।
2: जी चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
0: मैं लाल बाबू अग्रवाल।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, आरती जी बोल रहे हैं। मैं 12 बजे से कॉल लगा रहा था, आधा घंटा लगाया, उसके बाद परेशान हो गया था, बोला कि 12 बजे लगा,
1: 12 बजे के बाद थोड़ा कॉल स्लो हो जाता है,
0: थोड़ा नॉर्मल हुआ लगाया तो मैंने लग गया। ठीक है, बारिश हो रहा है पूरा बढ़िया।
1: बारिश हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, खेती वगैरह भी हो जाएगा अच्छे से।
0: हम तो धान बोरिंग से रोपवाए।
1: अच्छा,
0: पानी चला कर पानी चलाते हो रहा है, देखकर हमारा पैसा भी लग गया, बारिश हुआ।
1: चलिए कोई नहीं, अब थोड़ा बहुत बाकी होगा, उसमें पानी लग जाएगा। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है?
0: बोते सवेरे सैया जैया बदरिया।
1: कौन सा?
0: सवेरे सैया जैया बदरिया बढ़िया बक्सा सलैया, चाहे कौन सा यही लाइन है गाना का।
1: जी जी, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: हाँ, उनका भैया है जी, जीजू और
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 में।
9: अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम अस्सलाम।
9: कहिए समाचार।
10: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
9: हम भी ठीक है सर, पानी तो हो रहा है।
10: बारिश हो रहा है।
9: हाँ, कोई नहीं कहता है कि गर्मी लग रहा है।
10: अच्छा,
9: हाँ ठीक है सर। और सब सुनाइए।
10: और सब तो ठीक है।
9: सब ठीक है, ठीक है, मालिक करे जी सब कोई ठीक रहे। हाँ, कुली का गाना हमको सुना दीजिए।
10: गाना बता दीजिए कौन सा।
9: सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।
10: अच्छा, और कौन किसी को सुनाना भी है।
9: हाँ सुनिए, और पूरा रिमझिम परिवार के सब लोग सुने।
10: अच्छा चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनकर ये सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।
9: ठीक है ठीक।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमजी 90.4
0: एफएम पे। हम किस्मत बोल रहे हैं, कैमरा से।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक हो तो ठीक बना ना।
1: हाँ, हम नहीं होगी ठीक बानी सान।
0: चलिए, ठंडा बाहर रात के पानी भर रहा है।
1: पानी तो अभी हो होता है जा
0: ना, हमारे यहाँ तो अभी नहीं क्या हो, लेकिन हो सब होता जुम्मा बाद हो। सब ठीक बा घर के?
1: हाँ, हमने फिर ठीक बानी वो बताए रोगा ठीक बानी ना।
0: हाँ ठीक बानी, हम सब ठीक।
1: बताई कौन गाना सुने
0: कौन बाकी कवाली छोड़ के कहा सुनी लो?
1: तो बता दी कवाली में बरोबर बहुत अच्छा अच्छा बताएंगे।
0: अब अपना मुंह से सुनाओ बढ़िया होगा।
1: चले फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनाते रहेंगे रेडियो रेंजन 90.4 एफएम।
0: ठीक है।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
2: और 9097160602।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
6: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 97-0-97-06-575। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
13: Break के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो।
15: हेलो, नमस्कार।
14: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94.4 FM
15: के लिए। दिल से धन्यवाद है भारती जी को। और सुनाइए कैसे हैं?
14: हम तो अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
15: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामलीला प्रसाद गुहा बोल रहा हूँ, बघापुर भी चंपारण से जी। और मौसम कैसा है उधर?
14: तो मौसम अभी ठीक है, बारिश हो रहा है अब
15: जी। यहाँ पर तो सुबह में बारिश हुई है लेकिन अभी मौसम सुहाना बना हुआ है। और सब घर परिवार में अच्छा है?
14: हाँ हाँ, सब कोई ठीक है। आप बताइए आप सब कैसे हैं?
15: जी जी, सब कोई अच्छा है यहाँ पर भी।
14: क्या हो रहा है अभी?
15: जी अभी तो आपकी कोयल जैसी मधुर आवाज सुनकर बातें कर रहा हूँ, साथ में दुकान भी चल रहा है।
14: अच्छा
15: जी,
14: कौन सा गाना सुनना है आपको आज?
15: जी फिल्म का नाम है फूल और कांटे, और गाने का बोल है तुमसे मिलने को दिल कर रहा है।
14: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
15: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ। और दोस्त लोग है संजय, साजिद, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मिंजा जी, अंचल कुमार, कंसराज यादव जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, विकास का भाई कुमार, सुधीर कुमार अजय,

0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: गोपाल बोल रहा हूँ, ग्राम कसवासा जिला गुना से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है। अभी तो क्या है, खेत पर जा रहा है अभी तो, मक्का लगा रखी है।
1: अच्छा,
0: और क्या?
1: चलिए बढ़िया है। तो कौन सा गाना सुनना है आज?
0: गाना सुनवाई दिल है तुम्हारा फिल्म।
1: और सॉन्ग कौन सा है?
0: एक मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है, जरूर इतना नलका है नीचे बाज में। और क्या रेडी को रेडी गाना
1: बता दीजिए।
0: सुनील साहू जी, ज्योति साहू जी है, मांगलाल ढागल जी है, और आपके लिए भी है जी दीदी।
1: ओके
0: जी, प्ले कर दीजिए।
1: फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो,
15: नमस्कार जी।
14: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
15: कॉल तो लगाते लगाते तो अभी लगा है।
14: अच्छा,
15: हाँ जी, बराबर हमारा कॉल लास्ट में लगेला।
14: कोनो बात नहीं के कहो, लागल न लाग गई न
15: लागल, मतलब गाना तो बजाते नहीं होगा
14: ना। ना अब जितना अथी कॉल रहा सब बाज गई बा,
15: सिल्वर आदि गाना बोल रहा हूँ।
14: अच्छा
15: जी,
14: तो कल तो बजू है,
15: कल तो बजल बा,
14: सुनने नहीं
15: की ना, ड्यूटी हो गई है तो ना सुबह पहले ही गाना बजाए, 5 बजे आज बजे फिर ही गाना आज सुन लिया।
14: अच्छा, कौन सा गाना सुनने बता दी?
15: देश प्रेम गाना कहीं बढ़िया बजा दी।
14: कौन सॉन्ग रघु बता देती?
15: अच्छा रघु बजा दी अपने पसंद से, कहा पता कहा बजाई कल को सुन ले।
14: अच्छा ना, रघु लोग पसंद से बजाए नहीं, बस थोड़ा गाना अच्छा हो के
15: जाएगा।
14: देश प्रेम जो नहीं बताओ उन्हें के कौन सा सॉन्ग, मैंने उन्होंने तो बहुत सारा सॉन्ग
15: सॉन्ग तो बात है वही मैं बजा दे भोजपुरी है आज 5 बजे तक बजा दे आज 5 बजे उनके बानी का टाइम बाहर
14: से लेके अच्छा और गाना क्योंकि सुना होगा
15: रेडियो इंजिन जितना सुना था सबके पहले खतरा बाकी और सब बाल सुन लीजिए अपन कहा भेजवा
14: ठीक बताओ
15: सुन लगा सुन रहे बढ़िया गाना भोजपुरी बजा दे और
14: ठीक बात गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: भारती जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं सुधीर पाल बोल रहा हूँ, कोरिजमुआ जिला देवघर झारखंड से मैम।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: हाल चाल ठीक है मैम। उधर का मौसम कैसा है, बारिश हो रही कि नहीं?
1: बारिश तो हो रहा है इधर,
0: इधर भी हो रही है बारिश में।
1: चलिए, सब तो बढ़िया है, लग रहा है चारों तरफ हो रहा है।
0: हो रही है जी, चारों तरफ हो रही है बारिश।
1: तो
0: आज सुना दीजिए मैम दुश्मन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल है बलमा सिपहिया आए रे तेरे दम्बुक से डर लागे, तरह के गीत को बोल रहा।
1: एक बार और बोल दीजिए।
0: बलमा सिपहिया, बलमा सिपहिया तेरे बंदूक से डर लागे, यारा धक धक धक रहे, ऐसे गीत के बोल।
1: चलिए, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है
0: जी? सबसे पहले मैम आपको, सोनी मैम को और जो मनोरमा मैम है उनको और पूरे रेडियो के लिसनर है सभी को, और कुछ फ्रेंड्स हैं मदन कौल है, किशनो कौल है, राजकुमारी हैं, जुगल कॉल हैं, कमली कॉल हैं, और जो आपके बिहार में जो है पुराने लिसनर है मन्नान भाई को, किस्मत राघव जी को, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ
1: जी। चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी मैम।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
8: Now pick it up, now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
10: The phone can be bajti hai to kehte hain hello.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नमस्ते मैम।
13: नमस्ते, कैसी है मैम?
12: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
13: हम भी ठीक हैं।
12: नाम बता दीजिए अपना।
13: मनीषा कुमारी।
12: क्या हो रहा है अभी?
13: अभी तो कॉल लगा रही थी।
12: हाँ,
13: लग रहा था कॉल नहीं लगे।
12: सब लगाते लगाते तो लग गया।
13: चलिए, ऐसे अच्छा और क्या ही हो सकता है।
12: तो
13: हो रही है?
12: हाँ, तो हो रहा है।
13: हाँ, इधर भी हो रहा है।
12: चलिए, सब दोनों तरफ हो रहा है और अच्छा है।
13: बारिश में नहा रही थी, नहा कर और कॉल लगा रही। अच्छा लगा बारिश में नहा कर।
12: लीजिए आप बारिश का आनंद।
13: हाँ।
12: मेरी तरफ से भी थोड़ा और ले लीजिएगा, और इतना नहीं कि तबीयत ही खराब हो जाए।
13: और सब बताइए, बढ़िया है ना? आपके घर में सब कोई ठीक है ना?
12: हाँ, मेरे घर सब कोई ठीक है।
13: चलिए, गाना सुना दीजिए।
12: बता दीजिए।
13: हम प्यार करने वाले, दुनिया को न डरने वाले।
12: ओके, और कौन किसी को देखते
13: हैं? नया वाला सुनाइएगा।
12: ओके, कौन किसी को सुनाना भी है?
13: अपना बुधवार को दिन के।
12: हेलो, बढ़िया है, फिर सुन ली है। तो आज आपका फरमाइश की तो आज नहीं तो कल फिर सुन लेंगे।
13: कल बजेगा?
12: हाँ,
13: चलिए तभी
12: सुना दीजिए तब।
13: ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
12: बाय मैम।
13: बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बता दीजिए अपना।
0: नाम है मेरा गुलशन साहिबा।
1: और कहाँ से हैं आप?
0: हम सिवान से हैं।
1: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप ठीक हैं?
1: तो मौसम उधर का कैसा है? बारिश हो रहा है उधर या नहीं?
0: मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है।
1: तो लग रहा है ये चारों तरफ हो रहा है।
0: जी
1: भोजन हो गया?
0: जी नाश्ता हो गया, आपका हो गया?
1: तो बता रही है कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: ये गाना नहीं है, सही आ रहा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा मीठा हुआ है, वही गाना।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
0: जी हम अपने हस्बैंड को सुना।
1: चलिए तब तो बढ़िया है। ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: जी ओके, अल्लाह हाफिज।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
6: और 90-97-61-60-02।
1: नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
8: Now pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up,
9: hello.
8: Pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up,
9: hello. The wondering के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: नमस्ते मैडम जी।
10: नमस्ते,
11: कैसे है मैडम जी, नाश्ता हो गया?
10: हाँ, हम तो ठीक है, नाश्ता भी हो गया है
11: जी।
10: आप बताइए, आप सब कैसे हैं और क्या हो रहा है?
11: मैं अच्छा हूँ, आपके पास फोन लगा रहे हैं।
10: कौन सा गाना सुनना है आज?
11: गाना सुनना है दिल वाले
10: गाने के बोल।
11: एक ऐसी लड़की थी उसे प्यार करता,
10: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है
11: जी आपको। जितना रेडियो रिमझिम आगे है सुनते हैं सब, दोस्त सब सुनते हैं, टोटल सब
10: जी। चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM
11: जी। मैडम जी नमस्ते।

0: हेलो मैम, नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 FM में।
0: नमस्ते मौसम बा मैडम,
1: नाम बता दी पहले।
0: संतोष
1: जी, मौसम तो ना बारिश होता है बहुत ज्यादा,
0: यहाँ तो बहुत धूप है। भेज दीजिए उधर से बारिश, इधर भेज दीजिए, बहुत हम गर्मी से परेशान है।
1: जाएगा जाएगा, जरूर जाएगा इधर से, अभी तो हो रहा है।
0: अच्छा जी,
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
0: गाना मलपुआ वाला बजा दीजिए।
1: गाना सुने लाइक नहीं थे,
0: लाइक नहीं थे,
1: रेडियो पे बजाए वाला नहीं थे।
0: अच्छा जी, तो राम लखन का गाना सुना दीजिए।
1: अच्छा चलिए ठीक बा, और गाना क्योंकि सुनाओगे बा?
0: हाँ जी, सबसे पहले आपको सुनवाना है, बाद में परमात्मा को, बिजली को, धनजय को, और अपना पूजा सरोज का। बहुत रेडियो में जितना साथी है लोग तरह के हुका।
1: चलिए ठीक है, गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
11: Jab phone ring de bajte hai to kehte hai hello, hello, hello, hello, hello.
12: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhwar aur shukrwar ko subah subah 11 baje se call karke apne gaane ke farmaish ko record kara sakte hain. नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: जी नमस्कार।
14: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
13: भारती जी या मनोरमा जी,
14: पहचानिए,
13: बोलिए, बताइए। आवाज तो दोनों आदमी का मिलता जुलता है।
14: भारती बोल रहे हैं
13: जी ना। अमिताभ मास्टर ग्राम धनाव से।
14: हाँ जी।
13: तो ये कैसा मौसम है आपकी तरफ?
14: मौसम तो बारिश हो रहा है इधर अभी।
13: हाँ, हम लोग तो बारिश नहीं हो रहा है लेकिन बादल है सुबह से।
14: यहाँ रात से ही बारिश हो रहा है।
13: आते आते ना। चलिए, और सब? एक्चुअली हम लोग भी ठीक है,
14: ठीक होना ही चाहिए।
13: आज तो जुम्मा का दिन है तो हम लोग जुड़ेंगे तो जुम्मा बाद 1 बजे के बाद है। चलिए तो गाना बजा दीजिएगा, बीबी हो तो ऐसी मूवी का।
14: कौन सा सॉन्ग?
13: फूल गुलाब का, तुम्हें हजारों में एक चेहरा जनाब का। और सबसे पहले आप लोगों को सुनाना चाहते हैं और जितने रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सभी को सुनाएंगे। और हम लोग रोशन ट्रिगर में धनाव से आपके कार्यक्रम सुनते हैं, सभी लोग सुनेंगे।
14: ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
13: जी धन्यवाद।

0: हेलो जी नमस्ते, मैं नेपाल बिहार रजिस्ट्रेशन बिहार से संजय कुमार सर।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: चलिए इसके लिए धन्यवाद। आवाज सुनाइए उधर का हाल खबर सुनाइए। हमारे उधर तो बारिश हुआ था सुबह में।
1: इधर का भी हाल ठीक है
0: जी,
1: इधर का भी हाल खबर ठीक है और इधर भी बारिश हो ही रहा है अभी।
0: इधर बारिश हो रहा है, उधर छूट गया है लेकिन रोकने में सब लोग लग गए हैं।
1: चलिए फिर ठीक
0: धान की रोपाई आपके तरफ होता है कि नहीं?
1: क्या
0: बोल रहे हैं कि धान
1: की
0: रोपाई आपके तरफ होता है या होती है कि नहीं?
1: हाँ, होता है मेरे यहाँ
0: भी। बढ़िया लगता होगा वो देखकर।
1: बहुत
0: देखने में अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग अगर रोपाई होता है तो मिलता है हम लोग खाने के लिए दाना धान चावल। ऐसे सुनिए ठीक है सब। आज गाना सुना दीजिए हमें। तेरी मेरी दिल की मेरे सा बंधन हम दोनों जा, तेरी अंदर तेरी जान, मेरी अंदर तेरी जान। एक ही संग सुना दिया जाए
1: और कौन किसी को डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट में सबसे तो पहले आपको रेडियो रंजन संपूर्ण परिवार को दोस्त हो गया खाना शर्मा मास्टर जी कुमार जी राम लक्ष प्रसाद कुशवा जी कृष्ण भगवान से आदि माया कला भाईपुर नरेश सोहनी दीपक दास भगवान ठाकरे माया मध्य प्रदेश ऐसी राजेंद्र यादव भारती संत लाल गौतम उत्तर प्रदेश मऊ से हमारे नाम से जाने पहचान तमाम को सलाह अधिकारी को पारस
1: जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रंजन में कॉल करने।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
11: नमस्कार जी।
12: नमस्कार,
11: और कैसे हैं भारती जी?
12: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: बस ठीक है। भारती जी बोल रहे हैं ना? आजकल तो आवाज भी पकड़ना मुश्किल हो जा रहा है।
12: अच्छा जी।
11: हाँ,
12: सबका आवाज सेम ही लग रहा है।
11: हाँ सेम ही लग रहा है, थोड़ी सी की फर्क है बस।
12: अच्छा,
11: पकड़ में आ गया है आवाज की कैसे बोला जाता है।
12: हाँ।
11: सेम मिलते जा रहा है अब।
12: कोई नहीं, कोशिश तो हो ही रहा है कि मतलब और बेहतर किया जाए।
11: कोशिश करने वाले के हार कभी नहीं होती है, इतना तो पता है। कोशिश करो, जरूर काम हासिल होगा
12: जी। आप सबकी है दुआ साथ में।
11: बिल्कुल रहेगा, कुछ हम लोग का रहेगा, कुछ ऊपर वाले का रहेगा, मुकाम हासिल हो ही जाएगा।
12: बिल्कुल।
11: अब तो हेलो हेलो फरमाइश के लिए तो दिक्कत नहीं होती होगी, अभी भी हो रहा है?
12: नहीं नहीं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं
11: है। हो गया है।
12: हाँ।
11: गाना सुना दीजिए।
12: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिए।
11: खेसारी लाल का गाना है। और तोहरा बिना खाना पीना नहीं है, जान तीनों तुहारा यही सुना दीजिएगा। बस आप लोगों के और जितने सुनने वाले हैं नाम से जानने वाले,
12: अपना नाम मेंशन कर दीजिए।
11: दनेश कुमार मिश्रा। अब आपके लिए नाम रखना पड़ेगा, अब इसमें भी आदत वही पड़ी है तो कम से कम पूछ लेना चाहिए ना पहले।
12: कई इसमें पहचान जाते हैं, उसमें अब नंबर से रहता है तो नहीं पहचान जाते हैं।
11: चलिए फिर सुना दीजिए।
12: ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए उसके साथ रेडियो।
11: चलिए चलिए।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94 FM में।
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग,
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। पहला कॉल है क्या? चलिए ठीक है, पहला कॉल पहला गया। पहचान रहे हैं क्या? कौन बोल रहे हैं?
1: गणेश।
0: चलिए ठीक।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: कुछ भी नहीं, बारिश हो रही है।
1: यहाँ भी बारिश ही हो रहा है।
0: समझ नहीं है क्या?
1: आई है तो बता दीजिए, कौन सा गाना सुनेगा?
0: हिंदी बता दीजिए, कोई
1: बताइएगा तभी ना। हिंदी तो सॉन्ग बजा ही देंगे, लेकिन कौन सा?
0: बारिश वाला बजा दीजिए कोई भी।
1: बारिश वाला कोई भी सॉन्ग? सॉन्ग किसी को डेडिकेट कीजिएगा?
0: आपको पूरा रेडियो बता रहे हैं।
1: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 097 06 575।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: खत्म भी होगा आपका ये अखबार। सुबह से कभी इस सोफे पर, कभी उस सोफे पर, कभी इस कुर्सी पर, कभी उस पलंग पर, कभी अखबार, कभी चाय, कभी सिगरेट। ओफो, मैं कहती हूँ कोई और काम भी है आपको, या सारा दिन यूं ही सोफे तोड़ते रहेंगे? जरा हालत तो देखिए घर की, कहीं अखबार बिखरा हुआ है तो कहीं सिगरेट के टुकड़े, कहीं जूठे बर्तन है तो कहीं जूते, मैले कपड़े है तो सोफे पर, एस्ट्रे है तो पलंग पर, घर के कबाड़ी की दुकान बना हुआ है, आपे के कार्टून बने हुए हैं।
1: मगर तुम भी कोई अनारकली तो दिखाई नहीं दे रही रमेश की माँ, तुम्हारी सूरत देखकर तो ये भी पता नहीं चलता कि तुम इस घर की मालकिन हो या नौकरानी।
0: और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। आप यहाँ से उठे, मुझे सफाई करने दें, मैं नहाऊं तो किसी शुमार कतार में आऊं। सच तो ये है कि आपके आलस ने मुझे आलसी बना दिया है।
1: और जी छोड़ो सौभाग्यवती, क्या सुबह सुबह सफाई और सुस्ती की बातें ले बैठी हो, जरा इस सोफे पर सुस्ता कर देखो, क्या आनंद आता है। जरा इस आराम कुर्सी पर बैठकर ये नॉवेल तो पढ़ो, देखो क्या मजा आता है। जरा मेरी तरह बेफिक्री से टांगे पसार कर आराम करके देखो, फिर देखो घर की सफाई जरूरी मालूम होती है या देह का सुख। ये सफाई, ये बनावट, ये सजावट तो बाहर के लिए है रानी, दूसरों को दिखाने के लिए, यानी अपने आप से धोखा।
0: धोखा?
1: भला आदमी हर वक्त घर की सफाई संभाल में लगा रहे तो आराम किस वक्त करे है? मैं पूछता हूँ घर आखिर होता किस लिए है? घर का सुख कहते किसे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब जाओ और दो कप चाय बना कर लाओ, एक मैं पीऊंगा और एक तुम पीना है।
0: अच्छा अच्छा। मगर मैं कहने जा रही थी, और नहीं तो अपने नौजवान बेटे की तो फिक्र कीजिए, तालीम खत्म करके आवारा फिर रहा है, इसके लिए कोई नौकरी, कोई लड़की, आखिर कब तक?
1: अरे भगवान, क्यों चिंता करती हो, नौकरी आजकल मिलती नहीं और लड़की वो खुद, मेरा मतलब ब्याह आएगा।
0: क्या कह रही हो?
2: गुड मॉर्निंग डैडी।
1: ओ गुड मॉर्निंग प्रिंस ऑफ वेल्स।
2: डैडी आज बड़ा मजा आया शहर।
1: हाँ, मुझे भी,
2: मौसम बहुत अच्छा था।
1: हाँ, यहाँ भी
2: हमने पार्क में खूब दौड़ लगाई डैडी।
1: हाँ, हाँ, किसके साथ?
2: किसके साथ? हाँ, जी वो मेरा मतलब है।
1: हाँ, बोलो बोलो, डरो नहीं बेटे, बोलो
2: जी।
1: हाँ,
2: वो
1: डैडी कौन है वो?
2: डैडी बहुत अच्छी लड़की है, एक बड़े सरकारी अफसर की इकलौती बेटी है, अच्छा मकान है, नौकर है, चाकर है, और डैडी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बहुत ही मिलनसार, आज की सोसाइटी की है इसलिए घूमने फिरने मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं समझती।
0: और
2: माँ धार्मिक विचारों की है।
0: अच्छा?
2: हाँ, अभी कल ही की तो बात है, हमने एक दुकान से किताबें खरीदी, मैंने बहराम डाकू नावल खरीदा और उसने जानती है क्या खरीदा?
0: क्या?
2: स्त्री सुबोधनी।
0: स्त्री सुबोधनी?
1: शाबाश बेटा शाबाश, मेरे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, देखा?
2: मगर डैडी हमारे घर और उनके घर में बड़ा फर्क है।
1: क्यों क्यों?
2: क्या बताऊँ, हमारा घर तो बिल्कुल बेडअप है, मगर उनका घर सफाई और सजावट का एक नमूना है, कहीं धूल का जर्रा तक नहीं, रख रखाव ऐसा कि बस वाह देखते रह जाओ, हर चीज हर वक्त करीने से सजी हुई, हर कोना टिप टॉप। लेकिन हमारा घर?
0: ये सब तुम्हारे डैडी का कसूर है, मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती इनकी वजह से।
2: मगर रसोई की हालत भी तो कहने देखने लायक नहीं है माँ, वहाँ भी रख रखाव नाम को नहीं है।
1: अरे हाँ, रसोई से याद आया, मैंने कहा रमेश की माँ वो एक कप चाय।
0: हे भगवान।
2: डैडी मैं कह रहा था कि अगर कहीं शोभा ने हमारा घर इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा डैडी, वो कभी इस घर में कदम भी ना रखेगी वो।
1: अरे देखना तो बेटा किसका फोन है।
2: देखता हूँ डैडी। हेलो, ओ शोभा, हेलो। हाँ, मैं रमेश बोल रहा हूँ। हाँ, क्या अभी 15 मिनट में? मगर शोभा सुनो तो, बंद कर दिया। मम्मी डैडी
1: क्या हुआ?
2: शोभा शोभा डैडी।
0: अरे शोभा क्या हुआ शोभा को?
2: शोभा आ रही है हमारे घर डैडी, अभी सिर्फ 15 मिनट में।
0: तो अच्छा है, मैं अपनी होने वाली बहू को आज ही देख लूं।
2: वो तो ठीक है माँ, सब ठीक है माँ, मगर जरा घर की हालत तो देखो, क्या यही नजारा दिखाओगे उसे?
0: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अजी सुनते हो, अब उठिए भी।
2: सारा घर कबाड़ खाना बना हुआ है, अगर शोभा ने ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा।
1: मगर वो चाल
2: डैडी तो... ये क्या कछुए की चाल दिखा रहे हैं? तेजी से उठिए ना प्लीज। भाग कर जाइए और शेव कीजिए।
1: अच्छा,
2: जी हाँ,
1: अच्छा,
2: शेव कीजिए और कपड़े पहनिए। क्या अपनी होने वाली बहू के सामने यूं ही बने रहेंगे?
1: अरे तो
2: मगर कुछ नहीं डैडी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की आन और शान दिखाने का मौका है, और आप हैं कि दाढ़ी बढ़ाए बनियान पहने जैसे बिल्कुल।
1: ओफो, मगर आज तो छुट्टी है, आराम का दिन है, भला अपने घर में भी दे।
2: बस हो गया ना भाषण डैडी, जल्दी चलिए बनिए संवरिए और मेकअप कीजिए। हाँ, और मम्मी मम्मी तुम हमारे डायलॉग क्या सुन रही हो? चलो फुर्ती से कमरा साफ करो। हाँ, रसोई सवारो और फिर अपने आप को भी दुरुस्त करो।
0: अरे हाँ हाँ, मैं तो अभी जाती।
2: ऐसे कैसे काम होगा, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। डैडी, ये अपना शेविंग सेट तो लेते जाइए।
1: हाँ हाँ।
2: और मम्मी तुम चलकर रसोई संभालो, इस कमरे को मैं दुरुस्त करता हूँ, लेकिन जरा जल्दी। हाँ,
3: ये अखबार है। हाँ, ये बर्तन, ये फूलदान,
2: अरे जूते भी यही है।
3: वाह वाह वाह, मैले कपड़े और ये सिगरेट के डब्बे। हमारा घर है या किताबें? वाह, सब किताबें भी यही हैं। चुराबे हैं ये, और ये छतरी, दिया सिलाई को भी यहाँ हो रहा है। वाह वाह,
2: डैडी वही काला सूट पहनेगा जो मुझे पिछले साल सिलवाया था। और मम्मी तुम?
0: हाँ बेटी।
2: अरे तुम तो तैयार भी हो गई।
3: वाह वाह मम्मी, कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ, ये हुई ना बात।
0: अरे यार तुम मेरी तारीफ छोड़ो और अपनी तैयारी करो। सुनो, अरे देखो तो कैसे लग रहे हो। चलो चलो चलो चलो चलो,
2: मैं भी तैयार हो लूं।
0: चलो।
2: मेरे बुशर्ट का बुशर्ट, हाँ मिल गई मिल गई मिल गई, लीजिए। अब कंघी गायब है, न जाने कहाँ चल।
3: वो हो, हाँ ये भी है, मिल गई मिल गई। ओफो, ये घर है या

0: ये हुई ना बात दादी, बिल्कुल हीरो लग रहे हो।
1: हीरो के बेटे मुझे गर्मी लग रही है।
2: बस थोड़ी देर की तो बात है डैडी।
1: हाँ,
2: बिल्कुल थोड़ी देर की। और मम्मी, मम्मी भी कैसे जंच रही है, बिल्कुल रानी जैसी। मम्मी यहाँ यहाँ बैठो। हाँ इधर इधर इधर। हाँ इस सोफे पर। हाँ डैडी आप इनके साथ। बाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ। हाँ यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कितनी सुंदर जोड़ी है।
1: मगर बेटा
2: बस डैडी बस बस बस बस बस बस, बस हिलिए बोलिए नहीं। और ये लीजिए अखबार, ये पकड़िए, इसे यूं पकड़ के बैठिए। हाँ
1: ऐसे।
2: और मम्मी, मम्मी आप यूं कीजिए कि ये स्वेटर बनिए।
3: ला मुझे दो।
2: हाँ ये लीजिए। और बस इसी पोज में, बिल्कुल
3: ठीक है।
2: हाँ हाँ बस अब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुस्कुराइए।
3: बिल्कुल पगला है ये तो।
2: शाबाश, वाह क्या शानदार तैयारी हुई है। घर भी नुमाइश की तरह बन समर गया है। डैडी शायद वो आ गई। आया, अभी आया। हेलो शोभा, आओ आओ अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो।
4: नहीं रमेश, मैं इस वक्त नहीं रुक सकती, एक सहेली के घर जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। मैं दरअसल तुम्हारी ये किताब वापस करने आई थी।
2: नहीं नहीं नहीं शोभा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो अंदर आना ही होगा।
4: हाँ। सॉरी रमेश, इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, फिर कभी सही। ओके बाय।
2: मगर मगर सुनो तो, शोभा शोभा गई। डैडी वो किताब देकर चली गई।
1: और इसने अंदर झांका तक नहीं।
2: मगर मगर वो
1: मैंने पाउडर सुर्खी तक लगाया, पसीना पसीना होते हुए भी सूट बूट पहना, और उसने शक्ल तक नहीं दिखाई।
2: मगर मगर डैडी उसे बहुत जरूरी काम।
5: रमेश के मुंह में बिल्कुल पागल हो जाऊंगा।
2: मगर डैडी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हमारा हमारा बिगड़ा क्या है आखिर, कुछ ना कुछ संवरा ही तो है।
1: मुझे सबक देते हो, मैंने कभी जिंदगी में इतनी स्पीड से काम नहीं किया, और जिस पोज में तुमने मुझे बिठाए रखा ना, मेरा दांग गंगा कट गया।
4: अब छोड़िए भी, जो होना था सो हो गया है, अब फिर से आराम कर लीजिए।
1: हाँ जरूर करूंगा आराम, और पहले की तरह ही खुले बदन खुले मिजाज। हाँ टांगे पसार कर और सोफा लताड़ कर। हाँ इस तरह।
2: माफ करना मम्मी, मैंने आपको नाहक परेशान किया। अब तुम भी जाकर पहले की तरह कपड़े बदल लो और डैडी के लिए चाय बना दो।
4: अच्छा बेटा।
1: ये रहा तुम्हारा सूट, यहीं पड़ा रहा है सोफे पर। वो कहाँ है मेरा मेरा अखबार, उसे भी पहले की तरह ही बखेर के रखूंगा। ऐश्रे में पड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी उसी तरह फैलाऊंगा। हाँ मुझे बिल्कुल पहले जैसा माहौल चाहिए। और रसोई से वो झूठे बर्तन भी उठा लो। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ जाओ। अब ठीक है, बिल्कुल पहली हालत घर की। और अब मैं इस सोफे पर टांगे पसार कर नाविल पढ़ूंगा। ये हुई ना बात अपने घर की, क्या बेफिक्री है, क्या सुख है, क्या आराम है, क्या मजा है। सच कहा है किसी ने, जो सुख चौबारे न बलख ना बुखारे।
4: ये लीजिए चाय।
1: अल्लाह वेला। ये हुई ना बात। मैंने कहा तुम भी बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो।
4: पहले जैसी ही लग रही हूँ।
1: अरे जरा देखना तो बेटा कौन है दरवाजे पर।
2: अच्छा डैडी।
1: शोभा
4: है, इतना घबरा क्यों गए।
2: कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम।
4: हाँ मैं, क्यों कोई एतराज है।
2: एतराज नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यार, किस नहीं, कोई एतराज नहीं है। मगर मगर तुम तो
4: भाई, मैं अपनी सहेली के यहाँ गई तो मालूम हुआ कि वो कहीं और गई हुई है, सो वापिस आकर तुम्हारे घर आ गई। ओहो अब ये हाथ तो हटाओ ना, मुझे अंदर आने दोगे या नहीं।
2: सॉरी।
4: नमस्ते माता जी। नमस्ते पिताजी।
2: नमस्ते नमस्ते
4: नमस्ते। अरे ये बात क्या है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं?
2: कुछ नहीं शोभा, कोई बात भी तो नहीं। शोभा तुम्हें देर हो जाएगी, तुम फिर कभी।
4: जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर, बहुत थक गई हूँ।
6: हाँ हाँ बेटी यहाँ बैठो सोफे पर।
4: धन्यवाद। हाँ कितना आराम है यहाँ, कितना सुख
6: जी।
4: हाउ स्वीट, कितना प्यारा है ये घर, सचमुच बिल्कुल असली रूप का। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं?
2: शोभा तुम्हें हमारा घर अच्छा लगा?
4: और रियली, घर हो तो ऐसा जहाँ बेफिक्री और आजादी ही आजादी हो। एक हमारा घर है रमेश, जहाँ हर वक्त हर चीज इस तरह बनी रखी रहती है जैसे वो घर न हो कोई अजायब घर हो। नौकर है कि सारा दिन सजावट में लगे रहते हैं, न मर्जी का बैठना न मर्जी का लेटना। कहीं बैठने लगो तो हाँ यहाँ न बैठना बेटा अभी ठीक किया है, कहीं लेटने लगो तो यहाँ नहीं शोभा जी अभी सिलवटें दुरुस्त की हैं, अंदर जाने लगो तो अरे रे रे रे इधर नहीं आना शोभा रानी अभी सफाई की है, कुछ उठाने लगो मैली हो जाएगी। उठते बैठते सोते जागते इंचों सेंटीमीटरों का हिसाब है हमारे घर।
2: लेकिन शोभा घर का रख रखाव सही पहनावा भी तो जरूरी है जिंदगी के लिए।
4: इस पोजीशन में नहीं बैठो साड़ी खराब हो जाएगी, टेढ़े ना लेटो कपड़ों की क्रीज खराब हो जाएगी, ये करोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, वो करोगे तो डैडी बुरा मान जाएंगे, घर न हो गया मिलिट्री ऑफिस हो गया। मगर इस घर में एक अपनापन है, एक आजादी है, सुख चैन और आराम की आजादी।
2: ये भी खूब रही, बहुत खूब, देखो तो है।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 9097160602।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम।
9: सुनो दिल।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रिमझिम,
12: सुनो दिल से।

0: ई निबंधन की प्रक्रिया शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक निर्दलीय समेत 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रशांत किशोर 13 जुलाई को करेंगे नामांकन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी और पूर्णिया समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और जन कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। श्री राधाकृष्णन गया जी के पिपाट परिसर में विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
1: इन अ डेमोक्रेसी वी मे अग्री।
2: लोकतंत्र में हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सबको एक चीज पर हमेशा सहमत रहना चाहिए और वह है जनता तथा संविधान के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता। सदन में विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संविधान सदैव हमारा साझा मार्गदर्शक होना चाहिए। मैं राज्यसभा में प्रायः कहा करता हूं कि बहस, चर्चा और कभी कभी व्यवधान भी अंततः किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि निर्णय के बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।
0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित बिहार के बिना विकसित भारत का लक्ष्य साकार नहीं हो सकता है।
2: हमको चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर लड़ना होता है, यही लोकतंत्र है। यह दलों के आधार पर लड़ा जाता है, यह बात ठीक है, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो हम सभी दलों के नेताओं का यह दायित्व तो बनता है कि हम मिलकर के बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए कार्य करें। यही लोकतंत्र की मूल भावना है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित प्रदेश बने।
1: विकसित बिहार।
0: प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा कि जन सेवा को प्रभावी बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों को संसदीय और विधायी कार्यों के हरेक पहलू का प्रशिक्षण देने का फैसला स्वागत योग्य है।
3: बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए आयोजित इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में भाग लेकर बेहद खुश। संयुक्त रूप से किया गया ये कार्यक्रम सदस्यों के संसदीय ज्ञान, न्यायी कौशल, लोकतांत्रिक जवाबदारी और अधिक मजबूत बनाने की ओर एक जरूरी पहल है।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने की अपील की।
4: बिहार में जो विधायी कार्य हो उसमें माननीय विधायकों की सहभागी कैसे हो, इसकी चिंता के लिए 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई और 2 दिन लोगों को सीखने का ही कार्यक्रम करना है। अभी तक माननीय मंत्री, माननीय विधायक, हम लोग दूसरे को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे विधायी कार्य में आप जुड़ सकते हैं। और महामहिम उपराष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इससे ज्यादा गंभीर बात नहीं हो सकती है कि बिहार के विकास में आपका एक एक योगदान मिले, ये पूरा विधानसभा चाहता है।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि यह प्रबोधन कार्यक्रम देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती प्रदान करेगा।
5: इसलिए जनप्रतिनिधियों का निरंतर प्रशिक्षण लोकतंत्र की आवश्यकता है, औपचारिकता नहीं। यह प्रबोधन कार्यक्रम संसदीय नियमों, प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधेयकों, समितियों, वित्तीय नियंत्रण, संसदीय शिष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर सार्थक विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।
0: समारोह को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी संबोधित किया। 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय कार्यप्रणाली और विधानसभा की नियमावलियों से परिचित कराना है। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि, प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह से इस सुविधा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के आग्रह पर यह सेवा 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगी।
4: सारी सुविधा आपको घर पे मिले। पूरी सरकार की ये सोच है कि निबंधन का काम जो भी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनके घरों पर पहुंचकर मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट हमारा पहुंचे और आपको लाभ वहां मिले। मुख्यमंत्री विजेंद्र बाबू ने आग्रह किया है कि इसको 80 से 75 कर दीजिए, तो मैं जरूर ये विश्वास दिलाता हूं बिहार के लोगों को कि जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं सबका रजिस्ट्रेशन उनके घर पर हमारा मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट पहुंचेगा और आपके घर पे ही रजिस्ट्रेशन करेगा।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी भी मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पेपरलेस निबंधन, सीओ द्वारा निबंधन संबंधी पूर्व जानकारी और जीआईएस तकनीक के माध्यम से स्थल निरीक्षण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह व्यवस्था राज्य के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में लागू होगी।

0: मेरे नेतृत्व में चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी जो उसी विधानसभा के कार्यकर्ता।
1: जन सुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर 13 जुलाई को ही अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित है। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच एनडीए के उम्मीदवार बदले जाने पर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रिक्त हुई सीट पर पार्टी को सक्षम उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। राजद ने कहा है कि हार के डर से भाजपा ने प्रत्याशी बदला है। राजद ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय समुदाय से पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि हरिमंदिर साहिब में दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी के पवित्र श्री चोड़े साहिब मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय मूल के लोग भारत आएं तो पटना साहिब जाकर इनका श्रद्धापूर्वक दर्शन अवश्य करें।
1: साथियों, मैं आपसे पवित्र जोड़े साहब की भी बात आज करना चाहता हूं। मेरे एक साथी हैं श्रीमान हरदीप पुरी जी। पुरी परिवार के पूर्वज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार थे। हरदीप पुरी जी ने मुझे यह बताया था, उनका परिवार सिख संगत को सौंपना चाहता था। फिर हमने एक समिति बनाई और हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी भारत जाएं पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें।
0: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के विक्रम में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के अधिकांश स्थानों में, उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों में, जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय जूनियर बालक रग्बी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने महाराष्ट्र को एकतरफा मुकाबले में 31-5 से पराजित किया। इससे पहले बिहार की बालिका टीम तीसरे स्थान पर रही थी। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच जारी है। आरा में गठित न्यायिक जांच आयोग के समक्ष आज भरत तिवारी के माता पिता ने अपना बयान दर्ज कराया। वहीं उनके भाई

चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके तथा व्यक्तिगत कारणों से बाद में बयान दर्ज कराने के लिए समय मांगा। आयोग ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। बांका के अमरपुर दोहरे हत्याकांड का मुख्य शूटर सचिन सिंह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया है। अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर एक हाईवा ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। बगहा की एक अदालत ने मानव तस्करी के एक मामले में पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी। कटिहार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाछी टोला डहरिया चौक के पास से पुलिस ने 385 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। अररिया जिले के पतना थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक चार पहिया वाहन से 18 किलो गांजा के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की है। बक्सर जिले के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य स्तर पर जारी टेली कंसल्टेशन जिला रैंकिंग में औरंगाबाद जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लखीसराय में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शिवनगर वन रोपण अभियान का आज शुभारंभ किया गया। किशनगंज में बीएसएफ की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित 10 दिवसीय स्पंदन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फुटबॉल प्रतियोगिता सम्पन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में पूर्णिया आदिवासी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम विजेता बनी। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि। प्रदेश में आज से वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक निर्दलीय समेत 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रशांत किशोर 13 जुलाई को करेंगे नामांकन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज सिवान सारण सीतामढ़ी और पूर्णिया समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 097 06 575।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोप्राइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
10: ओके बेटा आ जाओ।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 66।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710-30992 या 97-65-65-750।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
3: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
4: भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित SES बाबा नेभराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। TGT सिंधी 1 रिक्ति, असिस्टेंट टीचर 6 रिक्तियां, लैब असिस्टेंट 2 रिक्तियां। ये सभी पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हैं। भर्ती के नियम, वेतन, योग्यता और आयु संबंधी शर्तों के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के नियम लागू होंगे। आप देख सकते हैं वेबसाइट www.edudel.nic.in। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स। गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट। आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स आमंत्रित कर रहा है विजिटिंग मेडिकल कंसल्टेंट के पद के लिए आवेदन। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS एवं MD अथवा MS डिग्री धारी होना चाहिए। कंसल्टेंट को कार्य दिवसों में प्रतिदिन 2 घंटे के लिए मेहरौली, नई दिल्ली स्थित C-DOT परिसर में उपस्थित होना होगा। ये अनुबंध प्रारंभ में 2 वर्षों के लिए होगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन एवं पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली NCR के प्रतिष्ठित अस्पतालों, क्लिनिकों से जुड़े डॉक्टरों को वरीयता दी जाएगी। इच्छुक डॉक्टरों से अनुरोध है कि वे अपना बायोडाटा तथा MBBS एवं MD अथवा MS डिग्री प्रमाण पत्रों की प्रतियां ईमेल से इस ID पर प्रेषित करें admin.del@c.in।
5: केंद्रीय
4: केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अपर डिवीजन क्लर्क के 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं और प्रतिस्थापन का स्थान रहेगा केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 4 से 10 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र।
3: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा, मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: तब रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांग

0: बनता है?
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही
15: उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
16: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
17: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
16: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
15: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
0: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789154915237141 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
15: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
18: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
15: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है माँ और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
19: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
15: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में एक विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
20: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
21: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
22: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
23: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
24: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
23: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
21: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
25: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
26: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
25: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
26: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
25: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
26: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
25: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
26: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
27: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
28: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
29: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
28: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
30: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
30: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
30: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
30: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
30: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
30: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम।

0: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सखी वार्ता के तहत बच्चियों को किया गया जागरूक। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा। मारपीट की घटना पर सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल। सदर एसडीओ ने भैंसही पंचायत का किया औचक निरीक्षण। 20 जुलाई से पठानकोट के लिए शुरू हो रही है साप्ताहिक ट्रेन सेवा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। महिला एवं बाल विकास निगम कार्यालय के द्वारा जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय हथुआ के सौरेजी में एक बैठक की गई, जिसमें छात्र छात्रों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार सुयोग्य लाभुकों को पहला बच्चा होने पर 5,000 और दूसरी बच्ची पर 6,000, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभुकों का पंजीकरण पर 2,000 प्लस 1,000 ICDS द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करना तथा प्रत्येक माह में एक बार बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने पर भी निर्णय लिया गया। इस दौरान हेडमास्टर की अध्यक्षता में छात्र छात्रों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चियों को भी चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करने की बात कही गई। बाल विवाह रोकथाम हेतु घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, साइबर सुरक्षा तथा अन्य योजनाओं के बारे में भी बच्चियों को जागरूक किया गया और सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जिसमें 1811121930 और 1098 के बारे में भी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रगति पर विस्तृत समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, सिविल सर्जन गोपालगंज, कार्यक्रम प्रबंधक धीरज कुमार और सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायक भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने भव्य पोर्टल की समीक्षा की, अस्पतालों की रैंकिंग, डॉक्टर परामर्श, मरीजों के वाइटल रिकॉर्ड, औसत प्रतीक्षा समय, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, डाइट एवं चिकन, लिनेन एवं लॉन्ड्री तथा आशा कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों की सराहना करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थानों को सुधार लाने का निर्देश दिया गया। HMIS की समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, प्रथम तिमाही में ANC, TD टीकाकरण, आयरन फोलिक एसिड वितरण, संस्थागत प्रसव सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े सभी संकेतकों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों को निर्धारित लक्ष्य की 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। गोपालगंज शहर के थामे रोड स्थित हलखोरी शाह के पोखरा के पास नाले की उड़ाही के दौरान सफाई कर्मियों के साथ कुछ स्थानीय लोगों का विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने सफाई कर्मियों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद अब सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य का बहिष्कार कर दिया। इसको लेकर सफाई कर्मियों ने विरोध करने के बाद महिला थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कर्मियों का आरोप है कि अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर शहर में विरोध मार्च भी निकाला गया और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक सफाई कार्य का बहिष्कार करने की बात कही गई। सफाई कर्मियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक नगर परिषद क्षेत्र में सफाई कार्य बाधित किया जाएगा। इस फैसले से बरसात के मौसम में शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर बुरा हाल पड़ सकता है। हालांकि वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले को सुलझाने के लिए लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मामले में नगर परिषद ने मध्यस्थता की पहल भी की है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की जमादार पिंकी कुमारी ने कहा है कि बरसात के दौरान नियमित रूप से नालों और सड़कों की सफाई की जा रही है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया गया है और मामले का जल्द ही समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार ने माझा प्रखंड के भैंसही पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान वार्ड संख्या 7, 8, 9 और 12 में संचालित हर घर नल योजना का निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को योजना सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। विद्यालय तक पहुंचने वाले रास्ते तथा विद्यालय की चहारदीवारी से संबंधित समस्याओं का भी अवलोकन कर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली के दुकान का भी निरीक्षण किया। खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं, अभिलेखों की जाँच और पारदर्शिता के साथ नियमित वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति का भी जायजा लिया गया। जहां आवश्यक मरम्मत एवं रख रखाव की जरूरत पाई गई, वहां संबंधित एजेंसी को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सारण तटबंध का भी निरीक्षण कर बाढ़ पूर्व तैयारियों, तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था एवं रख रखाव कार्यों की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को तटबंध की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की क्षति की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। थावे रेलखंड पर अब यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। रेल प्रशासन ने छपरा पठानकोट छपरा साप्ताहिक विशेष ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। यह ट्रेन 20 जुलाई से 28 सितंबर तक छपरा से प्रत्येक सोमवार तथा 22 जुलाई से 30 सितंबर तक पठानकोट से प्रत्येक बुधवार को कुल 11 फेरों के लिए चलाई जाएगी। जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन थावे पर इस ट्रेन का ठहराव दोनों दिशाओं से आने वाली गाड़ियों के रूप में होगा। जिले के यात्रियों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की यात्रा के लिए अब सीधी रेल सुविधा मिलेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वाराणसी सुमित कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गाड़ी संख्या 051-93 छपरा से पठानकोट साप्ताहिक विशेष गाड़ी प्रत्येक सोमवार को छपरा से दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी। यह गाड़ी छपरा कचहरी से दिघवा दुबौली होते हुए थावे स्टेशन पर शाम 5:05 पर पहुंचेगी। इसके बाद तमकुही रोड, पड़ौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की, सहारनपुर, जमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला, केंट, लुधियाना और जालंधर केंट होते हुए अगले दिन रात को 10:15 पर पठानकोट पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी 051-94 नंबर की गाड़ी बनकर पठानकोट से छपरा के लिए प्रत्येक बुधवार को रात 12:30 पर पठानकोट से प्रस्थान करेगी और जालंधर, लुधियाना, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, पड़ौना, तमकुही होते हुए थावे स्टेशन पर सुबह 6 बजे पहुंचेगी। इसके बाद दिघवा दुबौली और छपरा कचहरी होती हुई सुबह 9:15 पर छपरा जंक्शन पहुंचेगी। रेलवे के अनुसार इस विशेष ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए जाएंगे। इनमें एक जनरेटर और लगेज यान भी रहेगा। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में LSLRD 2 साधारण द्वितीय श्रेणी कुर्सी यान, 5 पोर्ट शयन यान और 2 वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी, 6 वातानुकूलित तृतीय वर्ग श्रेणी और 2 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी तथा तांबा के कोच भी इसमें शामिल रहेंगे। इससे गोपालगंज समेत आसपास के यात्रियों को यात्रा के दौरान पर्याप्त सीटों की सुविधा मिलने की संभावना है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त बीकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरियापुर गांव के हीरालाल यादव का पुत्र बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बघौच पुल के पास छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसके पास 112 लीटर शराब मिली है। इसके साथ ही एक और आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है। इन दो गिरफ्तार आरोपियों के पास से बोलेरो, गाड़ी भी बरामद की गई है। पकड़ा गया आरोपी सोना लाल कुमार और संदीप कुमार बताए जा रहे हैं। ये दोनों पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है और दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट प्रखंड के बड़हरा पंचायत भवन परिसर में आश्रय घरों में रह रही विधवाओं के लिए अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत, अस्थायी लोक अदालत का गठन, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी तथा PLV वायश अली की टीम द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को आश्रय घरों में रहने वाली विधवाओं के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत पर जानकारी दी, ताकि इन सभी महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला शेल्टर होम इत्यादि की व्यवस्था के बारे में भी विस्तार पूर्वक लोगों को जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के स्थानांतरण के दौरान बड़े पैमाने पर जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों से नए और वैध चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने को कहा है। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर फिलहाल लाइसेंस बुक का वितरण भी रोक दिया गया है। मीडिया खबरों के अनुसार थाने में ऑनलाइन आवेदन की जा रही है। पुलिस विभाग के आंकड़ों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि नए पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जब पदभार संभाला था, तब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके आने के बाद से SP कार्यालय के द्वारा एक भी नए शस्त्र लाइसेंस के लिए जिला पदाधिकारी कार्यालय को कोई अनुशंसा नहीं भेजी गई है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लाइसेंस जारी किया गया है। यह मामला अब मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल तक भी पहुँच चुका है। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 720 लीटर देसी शराब को जब्त किया है और गाड़ी को भी जब्त किया है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोनवा मोड़ के पास छापेमारी की, जहां वाहन जांच करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा गया। इस गाड़ी के अंदर से 720 लीटर देसी शराब मिली है। तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अब इस वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज करते हुए पुलिस अब आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। कटिया थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास मामले में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अभिषेक दुबे, पिता पुजारी दुबे, साकिन रेपुरा, थाना कटिया, जिला गोपालगंज का निवासी है। सासामुसा बेलवा ब्रिज के पास पुलिस ने छापेमारी कर विधिवत इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सखी वार्ता के तहत बच्चियों को किया गया जागरूक। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा। मारपीट की घटना पर सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल। सदर SDO ने भैंसही पंचायत का किया औचक निरीक्षण। 20 जुलाई से पठानकोट के लिए शुरू हो रही है साप्ताहिक ट्रेन सेवा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: इन सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे, इस सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: रियाज रेट्रो।
9: नहीं, मैगी के बारे में नहीं है ये एपिसोड, पर टेस्ट मेकर्स के बारे में जरूर है, सिल्वर स्क्रीन के टेस्ट मेकर्स। हेलो, मैं रिया, ये है रियाज रेट्रो। अगर आप जनवरी के एंड में पैदा हुए हैं तो मुझे क्या सुन रहे हैं, अभी तक अपनी फिल्म क्यों नहीं बनाई? कम से कम सितारे तो यही कहते हैं कि इन डेट्स में अगर आप पैदा हुए हैं तो फिल्म बनाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार भी है और एक लौता मकसद भी। आज हमारे मसाला मेकर्स तीन तीन, एक की सालगिरह 22 जनवरी, दूसरे की 23 और तीसरे की 24। कौन है ये? तीन गाने सुनिए बैक टू बैक और खुद गेस करने की कोशिश कीजिए। सारे काम क्या मैं ही करूंगी यहाँ पर?

बर्थडे रमेश सिप्पी 24th जनवरी बर्थडे सुभाष घई मतलब समझे आप जनवरी के थर्ड वीक में पैदा हुए हैं अगर आप तो फिल्में बनाना आपका कर्तव्य है और कर्मा भी

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
3: और मेरवा ब्रांच बबनौली चौक मेरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
4: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
6: रियाज रेट्रो।
7: और गाने कौन से सुने आपने? ओ मेरे सोना रे, तीसरी मंजिल से आशा जी और रफी साहब की आवाजें, RD की धुन बोल मजरू साहब। विजय आनंद ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी नासिर हुसैन के लिए और ये थी उनकी नवकेतन बैनर के बाहर पहली फिल्म। RD का म्यूजिक अगले गीत में भी, यूं ही गाते रहो, लिखा जावेद साहब ने, इन्फेक्शियस लिटिल सॉन्ग किशोरदा और SPB का गाया और रमेश सिप्पी ने पिक्चराइजेशन भी मस्त की थी सागर के इस गाने की। डिंपल कपाडिया, ऋषि कपूर, कमला हसन और गोवा के टिपिकल से पब में टेबल टॉप डांसिंग। और फिर कौन आए? अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास। आनंद बख्शी ने पता नहीं कैसे मूड में लिखा डिंग डोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग। एक्चुअली दिस इज कम्प्लीटली पॉसिबल कि सुभाष घई ने ये मुखड़ा दिया हो उनको। धुन LP और जैकी श्रॉफ को वन सुपर हिट वंडर बना दिया किसने? यस, सुभाष घई ने। मैं आपके साथ रिया, इस बार मेरे ट्विटर हैंडल @MissRiaMukherjee पर गालियां बरसेंगी, मुझे पता है, क्योंकि ये एपिसोड जियो रिस्ट्रिक्टेड है, इंडिया और सार कंट्रीज के बाहर नहीं सुनाई दे रहा। मेरे कंट्रोल में नहीं है ये चीजें, जो मेरे कंट्रोल में है वो काम कर देती हूँ, गाने बजा देती हूँ। विजय आनंद की फिल्में मुझे हमेशा बहुत पसंद आई हैं, खासकर नवकेतन वाली या ब्लैक एंड व्हाइट देवानंद फिल्म्स, 9-2-11, तेरे घर के सामने, काला बाजार।

मसाला स्वादिष्ट और हल्का था इनमें, जो धीरे धीरे रंगीन और तीखा होने लगा विद फिल्म्स लाइक तीसरी मंजिल, जूल थीफ, जॉनी मेरा नाम। पर वो शुरुआती इनोसेंस बहुत प्यारी लगती है ना।

गीता दत्त मोहम्मद रफी डिलाइटफुल रेन सोक्ड ड्यूएट एस डी वर्मन शैलेंद्र का, विजय आनंद की फिल्म काला बाजार से, और उससे पहले 9/2/11 से आशा ताई और किशोरदा आंखों में क्या जी, इसमें एसडी मजरू की जोड़ी। मेरी माँ बताती हैं कि जब ये गाना आया था इट वाज एज कंट्रोवर्शियल जितना चोली के पीछे क्या है था 90s में। अब आप सर खुजा रहे हैं कि हैं इतना प्यारा इनोसेंट गाना, इसमें क्या तकलीफ है। तकलीफ थी उस लाइन से, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। जस्ट इमेजिन रियाज रेट्रो। मैं आपके साथ रिया, मसाला मेकर्स के नाम विजय आनंद, रमेश सिप्पी और सुभाष घई, जिनकी सालगिरह को इंसिडेंटली बैक टू बैक 22nd, 23rd और 24th जनवरी। ऐसा मौका कैसे छोड़ा जा सकता था, बताइए तो जरा। अब आते हैं रमेश सिप्पी पर, या कहूं शोले पर। और भी बढ़िया मजेदार मसालेदार सुपरहिट फिल्म्स बनाई तो हैं उन्होंने, शान, सागर, शक्ति, सीता और गीता ही ऑब्वियसली हैड समथिंग फॉर द लेटर एस, लाइक करण जौहर हैज फॉर द लेटर के। पर शोले, उसके आगे क्या और उसके पीछे क्या, पहले सुपर फ्लॉप, फिर हिट, फिर सुपरहिट, फिर इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म्स में से एक। बड़ी सारी क्लासिक वाइल्ड वेस्ट फिल्म्स से इंस्पायर्ड थे सिप्पी साहब, कहा जाता है द गुड द बैड द अगली, द मैग्निफिसेंट सेवन, फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर। 50th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म ऑफ द लास्ट 50 years घोषित किया गया शोले को। BFI यानी ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूशन के 2002 के पोल में टॉप 10 इंडियन फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम्स। सलीम जावेद का एक राइटिंग मास्टरपीस, और मैंने किसी से सुना है कि अगर आज जावेद साहब से स्क्रीन प्ले के बारे में पूछो तो वो आपकी नजर इसके फ्लॉज की ओर खींचते हैं। बड़े सारे लॉजिक फ्लॉज है स्क्रीन प्ले में, और वो आपको जब बताते हैं, मुझे किसी ने बताया जिन्होंने डायरेक्टली जावेद साहब से सुना था, तब आपको भी स्ट्राइक करता है कि हाँ यार, शोले की स्क्रिप्ट में तो बड़े सारे झोल हैं। बट डू वी केयर? No, we do not.

0: पंचम और आनंद बख्शी ऑल द वे, आरडी के साथ मोहम्मद रफी यम्मा यम्मा में फिल्म रमेश सिप्पी की शान। इस गीत में फुल ऑन अरबिक म्यूजिक के टचेस और वो रुबाब टाइप प्लकिंग इंस्ट्रूमेंट का साउंड जो आरडी ने महबूबा महबूबा में भी यूज किया था।
1: प्रसाद क्लिनिक,
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, एलआईसी ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
7: रियाज रेट्रो।
0: यम्मा यम्मा सुनते ही शाकाल और उसकी वो थ्रेटनिंग सी टाट, आई मीन हाउ कैन यू मेक अ बॉल्ड हेड लुक स्केरी, पर सिप्पी साहब ने ये कर दिखाया। शाकाल का वो डेन, बच्चन और शशि कपूर का कमरबंद और रुमाल डांस, और वो मगरमच्छ शाकाल की कदमों के नीचे और शार्क्स उनके पीछे। शाकाल के आइलैंड तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत और उनका थीम म्यूजिक उषा उत्थप की आवाज में। ओहो, अगर शोले स्पेगेटी वेस्टर्न से इंस्पायर्ड थी तो फिर शान थी जेम्स बॉन्ड से इन्फ्लुएंस्ड। पहले एपिसोड में कहा था ना जावेद साहब ने कि उन्हें ऐसा लार्जर देन लाइफ, स्कैरियर देन स्कैरी, मैडली ईविल विलन्स के किरदार लिखने में बड़ा ही लुत्फ आता था। आपके साथ मैं रिया, RR फैमिली के साथ जुड़ जाइए ऑन ट्विटर। मेरा हैंडल @MissRiaMukherjee, MSRIYAMUKHERJEE। बहुत मस्ती करते हैं हम वहां, बिल्कुल ट्विटर की नेगेटिविटी से जुदा। आज बात यहां मसाला मेकर्स की, ऐसे तीन फिल्म मेकर्स जिनके जन्मदिन आते हैं बैक टू बैक और जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन को गोल्डन बना दिया अपनी लार्जर देन लाइफ फैंटास्टिक फिल्म्स के साथ। रियलिज्म इनका हॉलमार्क कतई नहीं था, पर बॉलीवुड या हिंदी मसाला फिल्म की जो डिस्टिंक्ट वोकैबुलरी है, म्यूजिकल रिचनेस, क्रेजी प्लॉट लाइंस, ड्रामेटिक डायलॉग्स, इंटेंस रोमांस, इस सब के कॉर्नर स्टोन्स को सेट करने में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राइट फ्रॉम द 50s टू द 90s, यानी विजय आनंद, रमेश सिप्पी और फिर फाइनली सुभाष घई।

0: किशोर दा का साथ दे रही थी एस जानकी। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया, पर गाने की शुरुआत में किसकी आवाज थी पहचाना आपने? वो स्पोकन सिंगिंग वाला पार्ट, यस, जावेद जाफरी। फिल्म सुभाष घई की मेरी जंग और उससे पहले ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू मी हिज बेस्ट फिल्म कर्ज से रफी साहब गा रहे थे अपने दुखते दिल और जिगर के बारे में। दोनों गीतों के कंपोजर्स LP बोल दोनों के आनंद बख्शी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
0: रियाज रेट्रो। मैं रिया, और मेरे हिसाब से हमारे जो तीसरे मसाला मेकर हैं सुभाष घई, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, उनकी म्यूजिक सेंसिबिलिटी वो तो नहीं थी जो विजय आनंद या रमेश सिप्पी की थी। गाने माना हिट हो जाते थे, बट समहाउ 80s के एल्बम्स में, चाहे वो LP या कल्याण जी आनंद जी ही क्यों ना स्वरबद्ध कर रहे हों, समथिंग वॉज मिसिंग। और एक लाउडनेस क्रैसनेस आ गई थी, और साउंड मिक्सिंग बैलेंसिंग भी ढंग की नहीं लगती थी, जैसे एनालॉग की सिंप्लिसिटी खत्म हो रही हो और डिजिटल का प्रिसिशन आया ना हो, सम रैंडम प्लेस इन द मिडल। अगेन, जावेद अख्तर वाले एपिसोड में उन्होंने कितने अच्छे से 80s के चेंज्ड सेंसिबिलिटीज के बारे में समझाया था। वैसे एक बात कन्फेस करूं, मुझे ये मिक्सिंग बैलेंसिंग का झोल तो शोले के साउंडट्रैक में भी लगता है जबरदस्त। टेक्निकली RD के दूसरे काम से काफी जुदा है शोले का थोड़ा सा सूपी साउंड मिक्स। टेक्निकल चीजों में नहीं घुसते, पर आप शोले का कोई गाना फुल वॉल्यूम करके देखिए, फटने लगेगा वो, जो कि टिपिकली RD बर्मन के गानों के साथ नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, कर्ज साउंड्स मोर RD देन लक्ष्मी प्यारे, है ना? बहुत लोग समझते हैं कि कर्ज का म्यूजिक पंचम ने दिया है। अपेरेंटली ये इत्तफाक नहीं है। जहां तक मैंने सुना है, कर्ज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियंस और टेक्नीशियंस के साथ काम किया था जो RD बर्मन के खास थे। इंटरेस्टिंग ना, कैसे हर टैलेंटेड बंदा किसी न किसी तरह से अपनी छाप छोड़ी देता है। जैसे विजय आनंद की ये फिल्म, जिसने आगे जाके जॉनी गद्दार को इंस्पायर किया, और श्रीराम राघवन ने फिल्म के अंदर देव साहब की इस फिल्म को ट्रिब्यूट भी दिया, विजय आनंद और जेम्स हैडली चेज को एक्नॉलेज किया। देवानंद वाले एपिसोड में भी कहा था ना, दोनों भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है थ्रिलर या हिंदी नॉयर सिनेमा में। हर फिल्म प्रेम कहानी नहीं होती थी तब,

0: संगीत कल्याण जी, आनंद जी, बोल इंदीवर, गाया किशोर दाने, गुनगुनाया उषा खन्ना ने और जॉनी मेरा नाम के इस गाने को मैं मल्टीपल विंडोज गीत कहती हूँ। सीरियसली यार, उस घर में कितनी खिड़कियाँ थी, खिड़की दरवाजे, रिवॉल्विंग डोर्स, इट वॉज एंडलेस। एंड ऑफ कोर्स हेमा मालिनी इज विकेडली इनोसेंट टाई बैक ब्लाउज, एफर्टलेस सेंसुअलिटी। आई गेस विजय आनंद को पता था कि वो इस गाने को जैसे पिक्चराइज कर रहे हैं, हेमा मालिनी की शक्ल से ज्यादा पीठ दिखेगी, तो एक हल्के कॉस्ट्यूम टच से पीठ को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। टू गुड।
1: रियाज रेट्रो।
0: मैं रिया, आज बड़ा मजा आया मसाला मेकर्स विजय आनंद, रमेश सिप्पी और सुभाष घई के साथ मसालेदार हिंदी फिल्म्स की दुनिया में घूमकर आपके साथ। इनके बर्थडेज 22nd, 23rd और 24th जनवरी। तीनों में से क्लियरली सबसे लिल्टिंग म्यूजिक और रोमांटिक थीम्स विजय आनंद की फिल्मों में ही था, ऑल्दो रमेश सिप्पी भी कभी कभी बहुत टेंडर मोमेंट्स क्रिएट कर जाते, जैसे वो शाम का सीन शोले में जब जया भादुड़ी लैंप्स जला रही हैं और बच्चन साहब नीचे आंगन में हारमोनिका बजा रहे हैं, सो स्टिल एंड सॉफ्ट एंड टेंडर, एक अदरवाइज बहुत ही एक्शन पैक्ड फिल्म में। तो चलिए फिर एपिसोड को एंड करने से पहले थोड़ा सा रूमानी हो जाएं।

सो क्यूट ना। रमेश सिप्पी की फिल्म सीता और गीता का नाम लेते ही एक गाना बाकी सबको निगल जाता है, हवा के साथ साथ ओ साथी चल। मैं ऐसे गानों को बुली हिट्स कहती हूँ, जो एल्बम के बाकी गीतों को शेड कर दे। पर किशोरदा लता जी की आवाज में कोई लड़की कल रात मुझे, ये वाला ड्यूएट कितना प्यारा था ना। उससे पहले पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स एवर, पल पल दिल के पास, फिल्म विजय आनंद की ब्लैकमेल, सिग्नेचर किशोरदा, कल्याण जी आनंद जी और राजेंद्र किशन। चलिए अब चला जाए। मेरी म्यूजिकल मसाला मैगी कैसी लगी आज बताना जरूर, बड़ी गालियां पड़ेंगी दूर देशों से मुझे पता है, पर क्या करूं, आज कोई और चारा था ही नहीं। सुभाष घई की फिल्म कालीचरण से ये अगला गाना मैं ही खुद को डेडिकेट कर देती हूँ अपने सारे नाराज दोस्तों की तरफ से। आप जो सुन रहे हैं उनको बता दीजिएगा जरूर कि मैंने अपनी सजा खुद ही सुना दी। यू टेक लोड्स ऑफ केयर। मिलते हैं हफ्ते भर में। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य धारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथहैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. The West Bengal government has formed the 9-member committee to examine the draft bill of Uniform Civil Code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagat Roy is one of the members of the committee. Union Railways and IT Minister Ashwini Vaishnav today announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub, with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres. Legendary playback singer S. Janaki, fondly known as the Nightingale of the South, passed away at the age of 88 today in Mysuru, Karnataka, after battling age-related health issues. Spanning over 6 decades, her career saw her singing in nearly 48,000 songs in multiple languages, including Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi. She is conferred with 33 state film awards. She was chosen for Padma Bhushan in 2013. Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has issued 9 notices to Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the Food Safety and Standards Act 2006. In a social media post, FSSAI said that the food business operator has been directed to submit a detailed explanation and compliance report, failing which appropriate legal action will be initiated. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. The third quarterfinal match between Norway and England will be played at Miami Stadium, with kickoff scheduled at 2:30 a.m. Indian Standard Time. Later, Argentina will face Switzerland at Kansas City Stadium at 6:30 a.m. Indian Standard Time. The Indian women's compound team of Jyoti Surekha Vennam, Pritika Pradeep and Chikita Taniparthi clinched the silver medal at the Archery World Cup Stage 4 in Madrid, Spain today. Meanwhile, in women individual compound event, teenage archer Pritika Pradeep produced a stunning turnaround to beat world number 11 Hazal Barun of Turkey, clinching her maiden World Cup bronze. And that is the end of this news bulletin. Thank you.
3: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट त्रिमूर्ति ट्रैवल.com पर विजिट करें।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: कहो साली जी, कहाँ की तैयारी बाहो?
2: रहो न जीजा, मैंने तैयार ना होके।
1: ओहो,

0: बुझने।
1: अच्छा तो चला।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 80029994।

0: ग्यारह जी हाँ 80-029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी मैं लालन पासवान बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस बढ़िया, जी अपना सुनाइए।
2: हमारा भी ठीक है।
1: मौसम कैसा होगा मैडम?
2: बारिश हो रहा है इधर, आपकी तरफ नहीं हो रहा है क्या?
1: नहीं नहीं अभी तो नहीं हो रहा, बादल छाया हुआ है।
2: नहीं तो यहाँ रात से ही बारिश हो रहा है।
1: इधर तो बादल छाया हुआ है, बारिश हुआ था भी नहीं हुआ।
2: और सब ठीक है ना?
1: हाँ सब बढ़िया जी।
2: तो भोजन हो गया?
1: हाँ भोजन हो गया है, अभी ड्यूटी में है।
2: अच्छा चलिए बढ़िया है। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: मुझे संगीत फिल्म का गाना सुनना है।
2: कौन सा गाना?
1: संगीत फिल्म का उड़ी उड़ी उड़ता जा, वो गाना नहीं है?
2: कौन सा?
1: मैं पंछी अकेला।
2: हाँ।
1: कोई मिले न मिले गाता जाऊं मैं अकेला।
2: जी और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी आपको और सभी श्रोतागण, मेरे भाई जितने भी रेडियो सुनने वाले हैं और मैं और मेरे समस्त परिवार।
2: जी चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
0: मैं लाल बाबू इंद्रा।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, आरती जी बोल रहे हैं। मैं 12 बजे से कॉल लगा रहा था, आधा घंटा लगाया, उसके बाद परेशान हो गया था, बोला कि 12 बजे लगा,
1: 12 बजे के बाद थोड़ा कॉल स्लो हो जाता है,
0: थोड़ा नॉर्मल हुआ लगाया तो मैंने लग गया। ठीक है, बारिश हो रहा है पूरा बढ़िया।
1: बारिश हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, खेती वगैरह भी हो जाएगा अच्छे से।
0: हम तो धान बोरिंग से रोपवाए।
1: अच्छा,
0: पानी चलाकर चला, इतना पानी से हो रहा है, देखकर हमारा पैसा भी लग गया, बारिश हुआ।
1: चलिए कोई नहीं, अब थोड़ा बहुत बाकी होगा, उसमें पानी लग जाएगा। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आज?
0: बोते सवेरे सैया जैया बदरिया।
1: कौन सा?
0: सवेरे सैया जैया बदरिया, बढ़िया बक्सर से लैया, चाहे कौन सा यही लाइन है गाना का।
1: जी जी, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: हाँ, उनका सर भैया है, भी जीजू और क्रेश गीत है, आप है या सचिन जी।
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 में।
6: सलामुअलैकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम।
6: कैसे समाचार?
7: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
6: हम भी ठीक है सर, पानी तो हो रहा है।
7: बारिश हो रहा है।
6: हाँ, कोई नहीं कहता है कि गर्मी लग रहा है।
7: अच्छा,
6: हाँ ठीक है सर। और सब सुनाइए।
7: और सब तो ठीक है।
6: सब ठीक है, ठीक है, मालिक करे जी सब कोई ठीक रहे। हाँ, कुली का गाना हमको सुना दीजिए।
7: गाना बता दीजिए, कौन सा?
6: सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।
7: अच्छा, और कौन, किसी को सुनाना भी है?
6: हाँ सुनिए, और पूरा प्रेमी परिवार के सब लोग सुने।
7: अच्छा चलिए फिर, ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।
6: ठीक है, ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमजी 90.4
0: किस्मत बोल रही है
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक तो ठीक बना ना?
1: हाँ, हम लोग ठीक बानी सन।
0: चलिए, ठंडा बाहर आज के पानी भर रहा है।
1: पानी तो अभी हो बताइएगा
0: ना, हम लोग तो अभी नहीं के हो, लेकिन हो सब होता जुम्मा बाद हुई। सब ठीक बा घर के?
1: हाँ, हमने फिर ठीक बानी, वो बताए रोवर ठीक बानी ना?
0: हाँ ठीक बानी, हम सब ठीक बा।
1: बताई कौन गाना सुने आज?
0: कौन बाकी कव्वाली छोड़ के का सुनी लो?
1: तो बता दी कव्वाली में बरोबर बहुत अच्छा तो बताए।
0: अब अपना मुंह से सुनाओ बढ़िया होगा।
1: चले फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहेंगे रेडियो रिमझिम 90.4।
0: ठीक है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो, नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM
6: के लिए। दिल से धन्यवाद है भारती जी को। और सब सुनाइए, कैसे हैं?
5: हम तो अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद को बोल रहा हूँ, बघापुर भी चंपारण से जी। और मौसम कैसा है उधर?
5: तो मौसम अभी ठीक है, बारिश हो रहा है अब
6: जी। यहाँ पर तो सुबह में बारिश हुई है लेकिन अभी मौसम सुहाना बना हुआ है। और सब घर परिवार में अच्छा है?
5: हाँ हाँ, सब कोई ठीक है। आप बताइए आप सब कैसे हैं?
6: जी जी, सब कोई अच्छा है यहाँ पर भी।
5: तो क्या हो रहा है अभी?
6: जी अभी तो काफी कोयल जैसी मधुर आवाज सुनकर बातें कर रहा हूँ, साथ में दुकान भी चल रहा है।
5: अच्छा
6: जी,
5: कौन सा गाना सुनना है आपको आज?
6: जी फिल्म का नाम है फूल और कांटे, और गाने का बोल है तुमसे मिलने को दिल कर रहा है।
5: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
6: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ, और दोस्त में हो गए संजय, साजिद, दीपक कुमार दासी, रामचंद्र मिश्रा जी, अंचल कुमार, कंसराज जादू जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, गुरुदास का भाई कुमार, उदित कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, राजा कुमार, उदास कुमार, सोनू कुमार, बबसा कुशवाहा जी, रविशा प्रसाद कुशवाहा जी, और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सूर्यमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जमी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी, और अभी रेडियो रिव्यू सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाह रहा
5: हूँ। जी जी बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
6: धन्यवाद।

0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: गोपाल बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा जिला गुना से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है। अभी तो क्या है, खेत पर जा रहे हैं, अभी तो मक्का लगा रखी है।
1: अच्छा,
0: और क्या?
1: चलिए बढ़िया है। तो कौन सा गाना सुनना है आज?
0: गाना सुनवाई दिल है तुम्हारा फिल्म।
1: और सॉन्ग कौन सा है?
0: एक मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है, उदित नारायण लड़का है नीचे बाज में। और क्या गाना
1: बता दीजिए।
0: कैमरे है सुनील साहू जी, ज्योति साहू जी है, मांगीलाल ढागड़ जी है, और आपके लिए भी है जी दीदी।
1: ओके
0: जी, प्ले कर दीजिए।
1: फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्कार जी।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: कॉल तो लगाते तो अभी लगा है।
5: अच्छा,
6: हाँ जी, बराबर हमारा कॉल लास्ट में लगेला।
5: कोनो बात नहीं के कहूँ लागल न लाग गई
6: लागल मतलब गाना तो बजाते नहीं होगा
5: ना। ना अब जितना कॉल रहा सब बाज गई
6: बा गाना बोल रहे।
5: अच्छा
6: जी,
5: तो कल तो बजू है।
6: कल तो बजल बा,
5: सुनने
6: नहीं थोड़ा ड्यूटी हो गई है तो ना पहले ही गाना बजाए, 5 बजे फिर ही गाना आज सुन लिया।
5: अच्छा, कौन सा गाना सुन बता दी?
6: देश प्रेम गाना कहीं बढ़िया बजा दी।
5: कौन सॉन्ग रघु बता रही थी?
6: अच्छा, रघु बजा ली अपने पसंद से, कहा पता कहा बजाई कल सुन ले।
5: अच्छा ना, रघु लोग पसंद से बजाए नहीं, बस थोड़ा गाना अच्छा हो के जाएगा।
6: देश प्रेम जो नहीं बताओ
5: उन्हें के कौन सा सॉन्ग मैंने वहाँ ने तो बहुत सारा सॉन्ग
6: सॉन्ग तो बांटे थे वही मैं आशा कौन देख बजा दे भोजपुरी है। आज 5 बजे तक बजा दे, आज 5 बजे उनके बानी का टाइम बा आज लेके।
5: अच्छा, और गाना क्योंकि सुना होगा
6: रेडियो इंजिन जितना लोग सुना था सबके पहले रघु खतरा बाकी और सब अपने बालू सुन लीजिए अपन कहा है भैया।
5: ठीक बताओ,
6: सुनने का सुन रहे बढ़िया गाना भोजपुरी बजा दे और इस करेंगे।
5: ठीक, गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM।

0: सलमा सिपहिया तेरे बंदूक से डर लागे, हियारा धक धक धक रहे ऐसे गीते बोले।
1: चलिए, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी, सबसे पहले मैम आपको, सोनी मैम को और जो मनोरमा मैम है उनको और पूरे रेडियो रेंजी के लिसनर हैं सभी को, और कुछ फ्रेंड्स हैं मदन कौल हैं, किशनो कौल हैं, राजकुमारी हैं, जुगल कौल हैं, कमली कौल हैं, और जो आपके बिहार में जो है पुराने लिसनर है मन्नान भाई को, किस्मत राघव जी को, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: जी चलिए फिर, ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजी 90.4 FM।
0: जी मैम।

0: फ्रीक्वेंसी पर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में। नमस्ते मैम।
4: नमस्ते,
3: कैसी है मैम?
4: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
3: हम भी ठीक हैं।
4: नाम बता दीजिए अपना।
3: मनीषा कुमारी।
4: क्या हो रहा है अभी?
3: अभी तो कॉल लगा रही थी।
4: हाँ,
3: लग रहा था कॉल नहीं लगे। लगाते लगाते तो लग गया।
4: चलिए, ऐसे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो
3: हो रही
4: है? हाँ, तो हो रहा है।
3: हाँ, इधर भी हो रहा है।
4: चलिए, सब दोनों तरफ हो रहा है और अच्छा है।
3: बारिश में नहा रही थी, नहा कर और कॉल लगा रही।

0: बारिश में नहा के
1: लीजिए आप बारिश का आनंद।
0: हाँ।
1: मेरी तरफ से भी थोड़ा और ले लीजिएगा, और इतना नहीं कि तबीयत ही खराब हो जाए।
0: और सब बताइए, बढ़िया है ना? आपके घर में सब कोई ठीक है ना?
1: हाँ, मेरे घर सब कोई ठीक है।
0: चलिए गाना सुनवा दीजिए।
1: बता दीजिए।
0: हम प्यार करने वाले, दुनिया को न डरने वाले।
1: ओके, और कौन किसी को देखते
0: दिए? नया वाला सुनाइएगा।
1: ओके, कौन किसी को सुनाना भी है?
0: सागर माई सुन ली अपना बुधवार को दिन के।
1: हेलो, बढ़िया है, फिर सुन ली है तो आज। आज तो फरमाइश की तो आज नहीं तो कल फिर सुन लेंगे।
0: कल बजे?
1: हाँ,
0: चलिए तभी सुनवा दीजिए तब।
1: ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: बाय मैम।
1: बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 90.4 FM में।
0: जी, गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बता दीजिए अपना।
0: नाम है मेरा गुलशन साहिबा।
1: और कहाँ से हैं आप?
0: हम सिवान से हैं।
1: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: जी अलहमदुल्ला ठीक है, आप हैं?
1: तो मौसम उधर का कैसा है? बारिश हो रहा है उधर या नहीं?
0: मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है।
1: तो लग रहा है ये चारों तरफ हो रहा है।
0: जी
1: भोजन हो गया?
0: जी नाश्ता हो गया, अब हो गया।
1: तो बता रही है कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: ये गाना नहीं है, सही आ रहा तू तो बदला नहीं है, मौसम कह रहा था, मीठा हुआ है वही गाना।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
0: जी हम अपने हस्बैंड को कह रहा।
1: चलिए, तब तो बढ़िया है। ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम जी।
5: नमस्ते,
6: कैसे हैं मैडम जी? नाश्ता हो गया?
5: हाँ, हम तो ठीक है, नाश्ता भी हो गया है
6: जी।
5: आप बताइए, आप सब कैसे हैं और क्या हो रहा है?
6: मैं अच्छा हूँ, आपके पास फोन लगा रहा हूँ।
5: कौन सा गाना सुनना है आज?
6: गाना सुनना है दिल वाले
5: गाने के बोल।
6: एक ऐसी लड़की थी उसे प्यार करता,
5: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है
6: जी आपको। जितना रेडियो रिमझिम आगे है सुनते हैं सब, आपको सब सुनते हैं टोटल सबके साथ
5: जी। चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM
6: जी। मैडम जी नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: हेलो मैम, नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मौसम बा मैडम,
1: नाम बता दी पहले।
0: संतोष
1: जी, मौसम तो ना बारिश होता है बहुत ज्यादा।
0: यहाँ तो बहुत धूप है। भेज दीजिए उधर से बारिश, इधर भेज दीजिए, बहुत हम गर्मी से परेशान है।
1: जाएगा जाएगा, जरूर जाएगा इधर से, अभी तो हो रहा है।
0: अच्छा जी,
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
0: गाना मलपुआ वाला बजा दीजिए।
1: गाना सुने लाइक नहीं थे,
0: लाइक नहीं थे,
1: रेडियो पे बजाए वाला नहीं थे।
0: अच्छा जी, तो राम लखन का गाना सुना दीजिए।
1: अच्छा चलिए ठीक बा, और गाना क्योंकि सुना होगा।
0: हाँ जी, सबसे पहले आपको सुनवाना है, बाद में परमात्मा को, बिजली को, धनजय को, और अपना पूजा सरोज का। बहुत रेडियो में जितना साथी है लोग तरह के हुआ।
1: चलिए ठीक है, तो गाना प्ले करते नहीं, सुनते हैं सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: भारती जी या मनोरमा जी?
3: पहचानिए,
2: बोलिए, बताइए। आवाज तो दोनों आदमी का मिलता जुलता है।
3: भारती बोल रहे हैं
2: जी ना। हाँ। हम चार मास्टर ग्राम धनाव से।
3: हाँ जी।
2: तो ये कैसा मौसम है आपकी तरफ?
3: मौसम तो बारिश हो रहा है इधर अभी।
2: हाँ, हम लोग तो बारिश नहीं हो रहा है लेकिन बादल है सुबह से।
3: यहाँ रात से ही बारिश हो रहा है।
2: आते आते ना। चलिए, और सब? एक्चुअली हम लोग भी ठीक है,
3: ठीक होना ही चाहिए।
2: आज तो जुम्मा का दिन है तो हम लोग जुड़ेंगे तो जुम्मा बाद 1:30 बजे के बाद है। चलिए तो गाना बजा दीजिएगा। बीबी हो तो ऐसी मूवी का
3: कौन सा?
2: फूल गुलाब का, तुम्हें हजारों में एक चेहरा जनाब का। और सबसे पहले आप लोगों को सुनवाना चाहते हैं और जितने रेडियो रेंजिंग सुनने वाले हैं सभी को सुनवाएंगे। और हम लोग रोशन टिकर में धनाव से आपके कार्यक्रम सुनते हैं, सभी लोग सुनेंगे।
3: चलिए ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
2: जी धन्यवाद।

0: हेलो जी, नमस्ते। मैं नेपाल बिहार संपर्क बिहार से संजय कुमार सर।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: चलिए इसके लिए धन्यवाद। और सुनाइए उधर का हाल खबर सुनाइए। हमारे उधर तो बारिश हुआ था सुबह में।
1: इधर का भी हाल ठीक है
0: जी,
1: इधर का भी हाल खबर ठीक है और इधर भी बारिश हो ही रहा है अभी।
0: इधर बारिश हो रहा है, उधर छूट गया है लेकिन देखने में सब लोग लग गए हैं।
1: चलिए फिर
0: धान का रोपाई आपके तरफ होता है कि नहीं?
1: क्या
0: बोल रहे हैं कि धान का रोपाई आपके तरफ होता है, ये होती है कि नहीं?
1: हाँ होता है मेरे यहाँ भी।
0: हाँ तो इसीलिए आपको तो बढ़िया लगता होगा वो देखकर।
1: बहुत
0: हाँ देखने में अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग अगर रोपाई होता है तो मिलता है हम लोग खाने के लिए काला धान चावल। इसे सुनिए ठीक है सब। और आज गाना सुना दीजिए हमें। तेरी मेरी दिल की मेरे सा बंधन हम दोनों तेरी अंदर मेरी जान, मेरी अंदर तेरी जान। एक ही संग सुना दिया जाए
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट में सबसे तो पहले आपको रेडियो रंजीम संपूर्ण परिवार को दोस्तों हो गया खाना शर्मा मस्तावी जी गई कुमार जी राम लक्ष प्रसाद कुशवा जी प्लीज बगान से अजय माया कला भाईपुर नरेश स्वामी दीपक दास दैवान ठाकरे मध्य प्रदेश ऐसी राजेंद्र यादव भारती संत गौतम उत्तर प्रदेश मऊ से हमारे नाम से जाने पहचान तमाम विशेषकर को मौजवलिया को सलाह अधिकारी को पारस कुछ
1: जी जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रंजीम

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: नमस्कार जी।
6: नमस्कार।
5: और कैसे हैं भारती जी?
6: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: बस ठीक है। भारती जी बोल रहे हैं ना? आजकल तो आवाज भी पकड़ना मुश्किल हो जा रहा है।
6: अच्छा जी।
5: हाँ,
6: सबका आवाज सेम ही लग रहा है।
5: हाँ सेम ही लग रहा है, थोड़ी सी की फर्क है बस।
6: अच्छा,
5: पकड़ में आ गया है आवाज की कैसे बोला जाता है।
6: हाँ।
5: सेम मिलते जा रहा है अब।
6: कोई नहीं, कोशिश तो हो ही रहा है कि मतलब और बेहतर किया जाए।
5: कोशिश करने वाले के हार कभी नहीं होती है, इतना तो पता है। कोशिश करो, जरूर काम हासिल होगा
6: जी। आप सबकी है दुआ साथ में।
5: बिल्कुल रहेगा, कुछ हम लोग का रहेगा, कुछ ऊपर वाले का रहेगा, मुकाम हासिल हो ही जाएगा।
6: बिल्कुल।
5: अब तो हेलो हेलो फरमाइश के लिए तो दिक्कत नहीं होती होगी, अभी भी हो रहा है?
6: नहीं नहीं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं
5: हो गया है। फिर गाना सुना दीजिए।
6: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिए।
5: खेसारी लाल का गाना है और तोहरा बिना खाना पीना नहीं है, जान तीनों तुम्हारा, यही सुना दीजिए।
6: किसी को डेडिकेट दिया है?
5: बस आप लोगों के और जितने सुनने वाले हैं नाम से जानने वाले।
6: अपना नाम मेंशन कर दीजिए।
5: दनेश कुमार मिश्रा। अब आपके लिए नाम रखना पड़ेगा, अब इसमें भी आदत वही पड़ी है तो कम से कम पूछ लेना चाहिए ना पहले।
6: कई इसमें पहचान जाते हैं, उसमें अब नंबर से रहता है तो नहीं पहचान पाते हैं।
5: चलिए फिर सुना दीजिए।
6: ओके, फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए उसके साथ रेडियो।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94 FM में।
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग,
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। पहला कॉल है क्या? चलिए ठीक है, पहला कॉल पहला गया। पहचान रहे हैं? पहचान रहे हैं क्या? कौन बोल रहे हैं?
1: गणेश।
0: चलिए ठीक।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: कुछ भी नहीं, बारिश हो रही है।
1: यहाँ भी बारिश ही हो रहा है।
0: समझ नहीं है क्या?
1: आए हैं तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेगा।
0: हिंदी बता दीजिए कोई हो।
1: बताइएगा तभी ना, हिंदी तो सॉन्ग बजा ही देंगे, लेकिन कौन सा?
0: बारिश वाला बजा दीजिए कोई।
1: बारिश वाला कोई भी सॉन्ग। ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट कीजिएगा।
0: आपको पूरा रेडियो।
1: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: जा, तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खातिर हम भागल ना है। आ जदि हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं
2: बनबू।

0: अरे एक करे जा, जितना तुहरा से रात में बात कोइले बनी न उतना केहू और खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हम
1: संतोष पागल नहीं।

0: कि हम ग्रेड ए पोल नहीं पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट, कारवा मिनी।
2: सारे गामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ।
3: बदन पे सितारे लपेटे हुए

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।